आपको रात को सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले अपना डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे भोजन का पाचन और चयापचय आसानी से हो जाता है। डिनर के बाद कैमोमिल टी पिए, इससे नींद को बढ़ावा देने में और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। तनाव और चिंता की भावना कम होती है, मन शांत रहता है और नींद अच्छी आती है। जीवन शैली में इन सरल बदलाव के साथ आप अनिद्रा या नींद न आने की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए अगर अच्छी नींद चाहते हैं तो इन्हें रूटीन का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, किसी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करने के लिए पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। जब स्वास्थ्य की बात आती है तो नींद उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि नियमित व्यायाम और संतुलित आहार लेना। नींद हमारे मन और शरीर के उपचार के साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ की माने तो नींद सबसे अच्छा मेडिटेशन है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप एक बेहतर और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आप अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार कैसे कर सकते हैं और कैसे एक बेहतर और अच्छी नींद ले सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक कहते हैं, अपने दैनिक जीवन में हम रोजाना ऐसे कई काम करते हैं जो हमारी नींद में खलल का कारण बनते हैं, और बेहतर नींद के लिए आपको इनसे बचने की जरूरत है। नींद शक्तिशाली है, जादुई है, उपचारात्मक है और डिटॉक्सिफाइंग है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस सब के अलावा भी नींद के बहुत लाभ है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप एक गहरी और पर्याप्त नींद लेते हैं। परेशान, हल्की और अनुचित नींद आपके उपचार में देरी का कारण बन सकती है। यह आपको फोकस और आपकी कार्य क्षमता को कम कर सकती है। सिर्फ उतना ही नहीं, नींद की कमी आपके पाचन में गड़बड़ कर सकती है, जिससे आप ज्यादा चिंतित महसूस कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको कम आराम का अनुभव हो सकता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी नींद का ध्यान रखें, क्योंकि ये निश्चित रूप से हमारी अधिकांश समस्याओं का समाधान कर सकती है। एक्सपर्ट्स की मानो तो नींद में खलल का कारण कई बार हमारी खुद की गलतियां होती है, जिसे हम पहचान नहीं पाते और धीरे धीरे वह आदत बन जाती है और यह आदत एक दिन बीमारी का रूप ले लेती है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी आदतों को बदलें और खुद को सेहतमंद बनाने की ओर एक कदम उठाएं। यहाँ हम आपको एक्सपर्ट्स द्वारा बताए कुछ उन खराब आदतों के बारे में बता रहे हैं जिसे हम जाने अनजाने जरूर करते हैं। इन बातों को जानने के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आप इसमें सुधार कर और अच्छी नींद पाने की कोशिश करेंगे। कैफीन का सेवन सीमित करें। कॉफी में कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और जो लोग इसका सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, यह उन्हें नुकसान ही पहुंचाती है। ये बात सही है कि कॉफीन मूड को बेहतर करती है, मगर अत्यधिक मात्रा हानिकारक भी है। दोपहर के बाद कॉफी आपके नींद में खलल डाल सकती है। इसीलिए यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफी के आदी हैं, तो आपको अपने कॉफी और चाय के सेवन को सीमित करने की जरूरत है। एक्सरसाइज शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी है। एक्सरसाइज हमेशा सुबह के समय करना ज्यादा फायदेमंद होता है। हालांकि हल्के व्यायाम आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन हैवी वर्कआउट करना सही नहीं है। दरअसल शाम का समय हमारे लिए आराम करने के लिए है। शाम के समय भारी व्यायाम से अनिद्रा और नींद की अन्य समस्याएं हो सकती है, क्योंकि व्यायाम हमें जागरूक और ऊर्जावान महसूस कराता है। अधिक ऊर्जा शारीरिक और मानसिक रूप से हमें अधिक सक्रिय बनाती है, जिससे हमारे मस्तिष्क को सोते समय बंद करना मुश्किल हो जाता है। भोजन हमेशा समय से करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने का भी एक समय निर्धारित होता है। जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अनुसार हमारा शरीर नहीं करता है, इसे आप बायोलॉजिकल क्लॉक भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से सुबह ब्रेकफास्ट और लंच टाइम से करना चाहिए, उसी तरह डिनर भी समय पर करना चाहिए, क्योंकि इस पर हमारी नींद की क्वालिटी निर्भर करती है। सूर्यास्त के बाद हमारी पाचन अग्नि तेज नहीं होती, इसीलिए रात के खाने के लिए कुछ हल्की और सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के 1-2 घंटे के भीतर भोजन करना सबसे अच्छा है। आजकल लोग सोने जाने से पहले ज्यादा समय अपने फोन पर बिताते हैं, जो कि बहुत हानिकारक है। इससे न सिर्फ हमारी नींद खराब होती है, बल्कि पूरा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसीलिए सोने से 1 घंटे पहले गैजेट्स का इस्तेमाल से बचना सबसे अच्छा है। जो पूरे दिन लगातार काम करने के

बात आपके दिमाग को आराम करने में मदद करता है। ऐसा करने पर निश्चित रूप से आपकी नींद की गुणवत्ता सुधरेगी। सुबह की धूप हमें विटामिन डी देता है जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, साथ ही नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। सुबह या शाम के समय थोड़ी धूप लेना आपको सोते समय बेहतर नींद लेने में मदद करता है। ये आपके शरीर के दैनिक सिरकाडियन रिदम को सेट करने में आपकी मदद करके ऐसा करता है। तो ऐसे में धूप में थोड़ा समय जरूर बिताएं। वेल डियर फ्रेंड्स, आई हैव गिवन ऑल इन्फॉर्मेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप। प्लीज फॉलो अ रूटीन एंड एक्सक्लूड बैड हैबिट्स। With this wonderful information, this is your RJ Chetan signing off. Bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat, feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: you will not get the 51% because the criteria for negotiating union is 51%. So sometimes it happens you will not get 51%. So then another concept has also devised. What negotiating council means? If you have get 20%, then you will have a one member in the council as well. So likewise, we can have five members in that particular council. So by involving all trade unions in that particular industry, so that all demands of the workers can be put forth before the employer. So this is one of the important reforms which the government has done. First question comes into the mind of the worker that, okay, I got so many provisions in the various courts, where I will go? If some dispute is there, if some problem is there, then where I will go? So in this particular code, we have provisioned the grievance redressal committee, and it is mandatory if you have if you are employing more than 20 workers, 20 or more than 20 workers, then you have to constitute this grievance redressal committee. And this grievance redressal committee itself have representatives from the employers as well as representatives from the workers. So it is a body which will provide you the immediate redressal of your grievance, so that it should not, you know, it should not convert into a big dispute. So this is first and foremost body, and it is compulsory for all industrial establishments to constitute. And more importantly, women also should be a part of this particular committee in proportion to their strength in the industrial establishment. So here the worker can apply, can represent himself for any of the grievances which requires address by the employer. जहाँ पे ज़्यादा strength है, ज़्यादा strength का मतलब इसलिए है कि वहाँ पे workers हमारा बहुत ज़्यादा, मतलब हम innocent है, उसको कोई भी misguide कर सकता है, trade unions या कोई भी miscreant व्यक्ति उसको misguide कर सकता है. सरकार एक आदेश देगी उस particular industry को जिसमें 100 या 100 से ज़्यादा worker हैं, उसमें एक वर्क कमेटी भी बनाई जाएगी. और उस वर्क कमेटी का काम केवल और केवल क्या होगा कि पूरा इंडस्ट्रियल पीस एंड हारमोनी को मेंटेन रखे, कॉमन इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को वो एड्रेस करे. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमेटी की जो कि पीस एंड हारमोनी को मेंटेन करने में हमारी मदद करेगी. और ये दोनों कमेटियाँ इन हाउस कमेटी हैं, इंडस्ट्री में ही इंडस्ट्री एम्प्लॉयर को बनानी है. और वर्क कमेटी और ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको पूरी तरह से रेगुलेट करेगी, सारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में भी इसको बनाया जाएगा. अब अगर हम लोग वर्क कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, अगर हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा, तो हम लोग जा सकते हैं लेबर मशीनरी के पास. अब लेबर मशीन हमने इसमें कंस्टिट्यूट, कॉन्सिलेशन ऑफिसर पहले भी थे, अभी भी कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स हैं, लेकिन अभी हमने इनका जो काम है वो एक टाइम इनको दे दिया है 45 डेज, कि 45 दिन में आप उस मुद्दे को सॉल्व करेंगे. अगर आप उसको 45 दिन में सॉल्व नहीं करते हैं, तो जो भी पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, वर्कर है, वो फ्री है कि वो ट्राइब्यूनल में चला जा सकता है. पहले ऐसा नहीं था, पहले वो ट्राइब्यूनल में सीधा नहीं जा सकता था, उसको सरकार से रेफर कराना पड़ता था अपना मैटर, वो भी उस केस में जिस केस में फेल्योर हो जाए सेटलमेंट. अब कौंसिलर ऑफिसर क्या करता है, एक मीडिएटिंग ऑफिसर है खासतौर से, क्योंकि सरकार ने आपको सुविधा प्रदान की गई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. वर्कर के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जितनी मशीनरी आप इसमें पाएंगे चारों कोड के अंदर, इसमें वर्कर को कोई पैसा नहीं देना है. और वो सीधे जा सकता है, कुछ मैटर्स पे वो ट्रेड यूनियन के थ्रू जा सकता है, लेकिन कुछ मैटर्स जो डिसमिसल, रिटेंचमेंट, इस टर्मिनेशन से संबंधित हैं, उसमें ट्रेड यूनियन की भी आवश्यकता नहीं है, वो सीधे जा सकता है. सो कुछ मुद्दे हैं जो ट्रेड यूनियन के मार्फत होंगे, क्योंकि वो कॉमन इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं. ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स का काम होगा, जो हमारी लेबर मशीनरी का पार्ट है, थ्रू आउट इंडिया में अवेलेबल है सेंट्रल स्फीयर में, और स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरीके के कॉन्सिलेशन ऑफिसर्स बनाए.
1: You have been listening to a talk on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes from a webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: आशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes.
2: उसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स पे। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स तो पहले हम लोग कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे पास, लेकिन इन कानूनों में जो बदलाव किया गया है वो ये है कि एक तो कुछ मुद्दों में जो हमारा वर्कर है वो सीधा सीधा ट्राइब्यूनल्स में भी जा सकता है, रिट्रेंचमेंट के केस में, डिसमिसल के केस में और टर्मिनेशन के केस में, जो आपके जो पूरा का पूरा इनकम आपका लॉस हो गया इन सब एक्शंस की वजह से एम्प्लॉयर के, वो सीधा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में भी अप्रोच कर सकता है। अब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को भी कोशिश किया जा रहा है कि उसको भी हम लोग अच्छा स्ट्रेंथन करें, और इस कानून के माध्यम से हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को बना दिया है 2-मेंबर ट्राइब्यूनल। पहले केवल 1-मेंबर ट्राइब्यूनल था, अब हमने बना दिया है 2-मेंबर ट्राइब्यूनल, और जिसके अंदर एक जुडिशल मेंबर होगा और जिसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। तो इसमें जो मामले रखे जाएंगे, अगर आपका कंसलेशन ऑफिसर्स के थ्रू 45 दिन में कोई भी नहीं हो पाया है सॉल्यूशन, तो आप ट्राइब्यूनल में सीधा चले जाएंगे। अगर कंसलेशन ऑफिसर्स ने कोशिश किया लेकिन सेटलमेंट एम्प्लॉयर के बीच में और वर्कर के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाया है, तो भी जो भी एग्री पार्टी है दोनों में से कोई भी ट्राइब्यूनल में चला जाए। और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बनाने का है वो तो पहले से भी हमारा चल रहा है, लेकिन इसमें भी प्रावधान किया गया है, सेम प्रोविजंस हैं जिसके अंदर 2-मेंबर ट्राइब्यूनल है ये भी, इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा, जुडिशल मेंबर होगा, लेकिन इसमें मुद्दे वो रखे जाएंगे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे होंगे और या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर उसमें अफेक्ट होंगे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, वो मुद्दे इसमें ये नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में वो मुद्दे रेफरेंस के थ्रू ही जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे वॉलेंटियर आर्बिट्रेशन की भी इसमें प्रावधान किया गया है। वॉलेंटियर आर्बिट्रेशन क्या है भाई, आप नहीं जाना चाहते लेबर मशीनरी के पास, आप नहीं जाना चाहते ट्राइब्यूनल के पास, आप ठीक है एम्प्लॉयर आप बैठिए, वर्कर बैठिए या ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर बैठिए, भाई ठीक है हम आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं, वो जैसे कहेगा हम उसकी बात मान लेंगे। तो ये भी एक बहुत ही जो है ट्रेडिशनल तरीका जो रहा है अभी तक का सक्सेसफुल ट्रेडिशनल तरीका रहा है कि जहाँ नहीं थर्ड पार्टी को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो एक न्यूट्रल आदमी को आप लेंगे और उससे अपना फैसला करा लेंगे। तो मैं बात करूँगा कोड ऑन वेजेस की, क्योंकि कोड ऑन वेजेस में भी कुछ अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, कुछ मुद्दे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के माध्यम से सीधा सीधा IR कोड में आ जाते हैं उसका जिक्र मैंने आपको कर दिया, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सीधा सीधा भाई टाइम पे पेमेंट नहीं मिला या कम पेमेंट मिल रहा है मिनिमम वेज से या मैटरनिटी बेनिफिट्स या कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो इस पर्टिकुलर कोड में दिए गए हैं, उनको इस पर्टिकुलर कोड में ही प्रावधान किया गया है, कुछ अथॉरिटीज बनाई गई हैं, वो अथॉरिटीज को सुने। अब इसमें जैसे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया, एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी बनेगा, तो ये बोर्ड जो है मुख्यतः केंद्र सरकार को एडवाइज करेंगे और राज्य सरकारों को एडवाइज करेंगे कि मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर क्या हमारा नीति होना चाहिए, क्या हमारा स्कीम्स होना चाहिए, इस पर वो मोटे तौर पे केंद्र सरकार को राज्य सरकार को अपनी सलाह दें। अब इसमें जो मुख्य बात मुझे बतानी है, क्लेम्स अथॉरिटी इसमें दिया गया है, क्लेम्स अथॉरिटी क्या देखेगा, आपका डिलेड वेजेस हुआ है, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस हुआ है, लेस देन मिनिमम वेजेस हुआ है या बोनस के डिस्प्यूट हैं, ये स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स क्लेम्स अथॉरिटी जो सरकार नोटिफाई कर रही है वो इसको सुन लेगा। इसी तरह अगर एम्प्लॉयर या वर्कर सेटिस्फाई नहीं है क्लेम्स अथॉरिटी से तो अपेलेट अथॉरिटी का भी प्रावधान किया गया है, अपेलेट अथॉरिटी में भी जाके वो सुना जा सकता है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो अभी आपको सारी चीज़ें बताई, ESI और PF और मैटरनिटी बेनिफिट्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो मेजर इसके अंदर प्रावधान किया गया है इसको कवर किया गया है इसमें, सो आपका 80% से ज़्यादा जो वर्कफोर्स है इसके द्वारा उसको वेलफेयर स्कीम का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला। ये इसका एक मैकेनिज्म जो है बनाया गया है सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में।

0: इससे रिलेटेड जो चीजें होंगी उसको कैसे सुना जाएगा। इसमें भी वही प्रावधान है, नेशनल लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा, स्टेट लेवल का सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा। ईपीएफओ और ईएसआईसी को इसमें कंटिन्यू रखा गया है, और जो ये सारे चीज़ें प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स और वेलफेयर स्कीम्स को कवर करें। सो इसमें भी दो अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ और अपेलेट अथॉरिटीज़, जो ग्रेचुटी से संबंधित समस्याओं को सुनेंगी और सुलझाएंगी। इसमें भी सेम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का सेम सिमिलर प्रोविजन है, और अपेलेट अथॉरिटी भी इसमें अलग से दिया गया है कि जो ये जो बेनिफिट्स होंगे वो अपेलेट अथॉरिटी, अगर मान लीजिए आप सेटिस्फाई नहीं हैं इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन रिपोर्ट से या किसी से, तो आप अपेलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं। ये ओएसएच कोड एक इम्पोर्टेंट कोड है कि जो आपका जो वर्क प्लेस है, बेसिकली ये आपको एक प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन देता है कि आपका वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपने किस प्रकार की सावधानियाँ रखनी चाहिए, वर्कर के हजार्ड्स को आप कैसे आप कम कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर कोड उस बारे में बात करता है। तो इसमें भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दिया गया है, नेशनल लेवल का बोर्ड बनेगा एडवाइजरी बोर्ड, उसी तरह स्टेट लेवल का भी एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। इसमें इम्पोर्टेंट जो प्रोविजन है, सेफ्टी कमेटी एक बनेगी उन ऑर्गेनाइजेशन में जो 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं जहाँ पे, और माइंस के लिए अलग से सेफ्टी कमेटी बनेगी, क्योंकि माइंस में अलग तरह का हैजार्ड्स है और बाकी इंडस्ट्री में अलग तरह का हैजार्ड्स है, तो दोनों के लिए अलग अलग तरह की कमेटीज का प्रावधान किया गया है, जो वर्कर्स जिस एनवायरमेंट में काम कर रहा है उस एनवायरमेंट को किस प्रकार से सुरक्षित बनाया जाए। और इसमें डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज और अपेलेट अथॉरिटीज का सिमिलर प्रोविजन है जैसे आप पिछले कानूनों में देख रहे हैं। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का भी सेम ही इसमें प्रोविजन है, मतलब आप देखेंगे कि बाकी तीन कोड में और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो एक बड़ा एम्बिट है, और बाकी तीन कोड में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के जरिए आप प्रिवेंटिव चीजों को कर लेंगे इनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के हिसाब से।
1: You were listening to a talk on grievance redressal and institutional mechanism in India's new labor codes by Govind Ram, Deputy Secretary, Ministry of Labor and Employment. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.

0: इलेवेंथ ट्वेल्थ में पढ़ाते हैं तो एट नाइन टेंथ में फिजिक्स ऐसे पढ़ाया जाता है कि जो जब बच्चा रियली में साइंस लेता है तो उसको इलेवेंथ और ट्वेल्थ में जब फिजिक्स पढ़ते तो ऐसे लगता है जैसे स्पेनिश या तो जर्मन पढ़ रहे हैं। तो अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सिक्स्थ या सेवन्थ स्टैंडर्ड में उसकी फिल्टरेशन हो जानी चाहिए कि जो बच्चे साइंस पढ़ना चाहते हैं आप उनको सिर्फ साइंस पे ही फोकस करने दीजिए। अभी जैसे उनको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, सिविक्स पढ़ाते हैं, अगर कोई सोशियोलॉजी लेना चाहता है तो आप उसको फिजिक्स बायो केमिस्ट्री मत पढ़ाइए। तो मेरे हिसाब से ये जो फिल्टरेशन है, अगर मेरी बात एजुकेशन मिनिस्ट्री तक पहुंच रही है तो जो भी ये फील्ड में एक्सपर्ट्स है वहां तक पहुंच रही है, तो अभी जैसे NEPR है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें अपने यहां पे बहुत ब्रिलियंट लोग हैं जो इसके बारे में सोच सकते हैं। डेफिनेटली इट इज वेरी सैड पार्ट ऑन अवर सोसाइटी कि ये एज में बच्चों को काउंसलर्स की जरूरत पड़े, मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए और उसके लिए अपनी सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए। इंडिया इतना बड़ा देश है, अपने स्टूडेंट्स की बाहर डिमांड है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि वो बच्चे वापस क्यों नहीं आते जब यूएस जाते या जो भी है। तो मेरे हिसाब से इसकी रेक्टिफिकेशन स्कूल लेवल से होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक्स ऐसे डिजाइन होनी चाहिए कि जब बच्चा PCM या तो PCB लेता है तो उसको फिजिक्स में डर नहीं लगना चाहिए। और एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, आपने सिर्फ PCM की बात कही, PCB और PCM नीट के बच्चे और JEE मेंस के बच्चों का फिजिक्स का पोर्शन अलग होना चाहिए। अभी जो बच्चे इंजीनियर्स बनना चाहते हैं उनको आप मशीन्स सिखाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाओ, ये सब बातें परफेक्ट है, लेकिन जो बच्चा नीट पढ़ता है आप उनको ये सिखाओ कि थर्मोमीटर कैसे यूज करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर यूज कैसे करते हैं, लेजर कैसे यूज करते हैं, इकोकार्डियोग्राम क्या होता है, MRI मशीन क्या होती है, CT स्कैन मशीन क्या होती है। ये बच्चे जब फर्स्ट ईयर MBBS में जाते हैं तब ये मशीन देखते हैं, उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता है, तब जाके वो सीखते। तो मेरे हिसाब से स्कूल लेवल पे इसकी रेक्टिफिकेशन करनी चाहिए।
1: यहाँ पर हम आपसे ही ये जानना चाहते हैं नयन जी, तो ये जो दोहरी पढ़ाई का प्रेशर है तो इसके बारे में आप कुछ कहिए कि क्या पैटर्न चेंज करने की जरूरत है।
0: अगेन यहाँ पे एक चीज होनी चाहिए कि अगर आप उनको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के तौर पे और उनके मार्क्स के ऊपर अगर आप एडमिशन दे रहे हैं तो आपको उनका बोर्ड एग्जाम का प्रेशर कम करना चाहिए, और अगर उनको बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के ऊपर ही अगर एडमिशन दिया जाए तो ऑब्जेक्टिव अभी दोनों चाहिए। तो एक बात समझनी चाहिए कि साल में 365 डेज ही होते हैं, हम लोग एक टेंडर एज के साथ डील कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत ही ज्यादा मासूम होते हैं, उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये डबल प्रेशर है। जब हमारे टाइम पे जब पढ़ाई होती थी तो 11, 12 के मार्क्स पे एडमिशन्स होते थे, तभी भी लोग इंजीनियर बनते थे, तभी भी डॉक्टर बनते थे, अभी इनफैक्ट वो लोग बहुत ही सक्सेसफुल है सोसाइटी में। तो ऐसा बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे तो ही बच्चा एकदम स्मार्ट है। हाँ, आप बिल्कुल सिलेबस ज्यादा रखिए, लेकिन बच्चे दोनों जगह पे पिसते हैं, ना यहाँ के रहते हैं ना वहां के रहते हैं। अभी के एजुकेशन सिस्टम बोलूं तो 11, 12 का पोर्शन साथ में होता है, बोलने को 24th मंथ है लेकिन बच्चों को मिलते सिर्फ 18 महीने। उसमें टीचर्स पे भी ये प्रेशर रहता है, उनको पोर्शन खत्म करना होता है, बच्चों को छुट्टियां नहीं मिलती है, बाद में जैसे दिसंबर मंथ आता है उनको जनवरी फरवरी में बोर्ड एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना होता है, तभी उनका बिल्कुल टच छूट जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम से। वापस बच्चे जब मार्च में ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई शुरू करते तो पूरा मोमेंटम चला जाता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चे ना यहां के रहते ना वहां के रहते, तो ये मैं बिल्कुल ये बात से इत्तेफाक रखूंगा कि दो में से एक जगह पे प्रेशर काम होना चाहिए उनको।
1: सही बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। अब हम सुमति जी के पास आते हैं। सुमति जी, हमें बताइए कि परीक्षा के दौरान, परीक्षा के कारण स्टूडेंट्स को घबराहट, टेंशन, डिप्रेशन होता ही है, साथ में पेरेंट्स को भी होता है, तो ये कई बार बच्चों को पैनिक अटैक आता है, तो इसको कैसे दूर किया जाए और माता पिता की, पेरेंट्स की, घर वालों की क्या भूमिका होती है उस समय?
2: सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आई एम श्योर कि काफी पेरेंट्स चौंक जाएंगे कि इनका जो 50% स्ट्रेस है ये पेरेंट्स की तरफ से आता है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है।
1: बिल्कुल,
2: ये कहना गलत होगा कि सिर्फ बच्चे स्टडीज की वजह से पैनिक अटैक आता है, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, और घर पर जो हम वो माहौल क्रिएट करते हैं
1: जी,
2: जो हम बातें करते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस उन्हें बताते हैं, वो जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहां बच्चों को हम ये कह दें कि तुम अपना बेस्ट दो,

0: और बाकी का छोड़ दो। तो आई थिंक उन्हें भी ये एहसास हो जाता है कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो घर से तो कोई ओपोजिशन नहीं आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समाज और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ये दूर की बात है, लेकिन घर पर स्पेशली फादर, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि काउंसलिंग के दौरान जब मैं बुलाती हूँ तो सिर्फ मदर आती है, फादर नहीं आते हैं।
1: अच्छा,
0: क्योंकि वो जानते हैं कि देयर विल बी अ लिस्ट और वो चेंज होना नहीं चाहते हैं। और मैं बच्चों की तरफ हूँ बिकॉज दे आर सो इनोसेंट, दे आर रेडी टू चेंज। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पेरेंट्स बदलना नहीं चाहते हैं। वो अपनी रिजिडिटी के साथ चलते हैं और वो कंपेयर करते हैं और ब्लेम गेम शुरू होता है घर में। देयर इज नो कॉमन मैसेज फ्रॉम मदर एंड फादर। एक कहता है बेटा चलेगा जो भी हो, दूसरा कहता है कि नहीं, अगर तुमने ये पढ़ाई नहीं की तो तुम्हें ये कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा,
1: बिल्कुल
0: तुम डॉक्टर नहीं बनोगे। तो हमारे घर पे ऐसा हो जाता है ना कि हम बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, उन्हें बनने नहीं देते हम। वी आर ऑलवेज क्रिएटिंग कि आप डॉक्टर बनो और ये बनो वो बनो। तो आई थिंक समवेयर देयर इज, मतलब वो कहते हैं ना, इंटरेस्ट का क्लैश हो रहा है। और आप कहेंगे कि द थ्री इडियट फिल्म वॉज द बेस्ट फिल्म, दैट रियली डिपिक्टेड कि किस तरह से आप उनके इंटरेस्ट को आप बदलना चाहते हो और किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आई वुड से कि घर पर जो पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, स्पेशली अगर कोई प्रॉब्लम अगर घर पर दिखता है तो। एटलीस्ट वंस अ मंथ पेरेंटल वर्कशॉप्स, टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स, ये जरूरी है। क्योंकि क्या है ना कि हम पेरेंटिंग ये एक स्किल है
1: जी।
0: जैसे एक सर्वाइवल किट होता है तो ये भी एक स्किल्स किट है। हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है।
1: बिल्कुल।
0: देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अराउंड, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है। वंस पेरेंट्स अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह से एक रैपो रखना है, किस तरह से इनके साथ बात करना है। आप एक 2 साल के बच्चे के साथ जैसे व्यवहार करते हो, आप 5 साल के बच्चे के साथ नहीं कर सकते, आप 15 साल के बच्चे के साथ उस तरह से नहीं कर सकते। तो हाउ टू हैंडल दीज इश्यूज, ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि एक टीचर आज सिर्फ 20-25 स्टूडेंट्स के साथ नहीं रहती है।
1: जी जी।
0: क्लास में आई थिंक देर आर अबाउट 80, 90, 100, 120। किस तरह से वो उन्हें हैंडल करे और किस तरह से पहचाने कि इसको कोई प्रॉब्लम है।
1: जी।
0: इट्स वेरी इजी कि आप डिस्टर्ब करते हैं क्लास में तो टीचर कहती है काउंसिलर के पास चले जाओ। बच्चा आता है और सोचता है कि मैंने क्या किया, ही डजंट नो कि क्यों मुझे भेजा गया है। और वो तो टीचर के बारे में बोलना शुरू कर देता है, आपको पता नहीं टीचर कैसी है, उसी का काउंसलिंग करो। और अक्सर मैं
1: सही बात है, बिल्कुल।
0: और कभी बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं कि मैम मेरे पेरेंट्स ना उनकी काउंसलिंग करो आप पहले, सबसे पहले, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। और मैं उन्हें बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं जब पेरेंट्स को बुलाती हूँ तब मुझे दिखता है साफ
1: जी।
0: कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। सो आई एम फीलिंग दैट द चाइल्ड इज अ पुअर विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस
1: जी।
0: और जब मैं पेरेंट्स को बुलाती हूँ मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले वो चेंज होना नहीं चाहते, वो बहुत बड़ी लिस्ट लेके आते हैं और मैं कहती हूँ कि वो लिस्ट को आप मत दिखाओ मुझे, आप ये बताओ मुझे कि आपके बच्चे के कुछ 5 अच्छी क्वालिटीज क्या हैं। और वो नहीं बता पाते हैं।
1: क्या बात है, ये तो
0: सोचने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जब मैं कहती हूँ कि आप मुझे 5 इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताइए तो दोनों मिलके शुरू हो जाते हैं कि आपको पता नहीं ये कैसा है, आपको पता नहीं ये क्या नहीं क्या बोलता है। और बच्चा मेरे सामने देखते रहता है यू नो। और फिर मैं उसको अलग से बुलाती हूँ और फिर आई हैव टू काउंसिल हिम कि ये माँ बाप ऐसे ही होते हैं, डोंट वरी, एक फेज है, निकल जाएगा। तो मुझे ये करना पड़ता है।
1: तो एक नई बात सामने आई है, सुमति जी ने कहा कि टीचर्स

0: की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं तो नयन जी आप बताइए इस बारे में आप क्या कहेंगे।
1: यहाँ पे ऑडियंस में मेरे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, तो मैं जब तक जानता हूं मेरा हमेशा स्टेटमेंट यही होता है कि मैं एक 45 इयर्स प्लस 50 इयर्स प्लस प्रोफेसर हूं, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 16-17 साल का बच्चा मेरी मैच्योरिटी पे आके सुनेगा मुझे। तो मुझे उसके जैसे बच्चे बनके पढ़ाना होता है, और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये पक्का जानते हैं कि नयन सर एकदम हंसते खेलते पढ़ाते हैं। डांटते हैं, उनका गुस्सा शायद 30 सेकंड का होता है, और उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अभी 30 सेकंड में शांत हो जाएंगे। एंड मुझे उनको सिर्फ एक ही चीज बोलनी होती है कि आपके सामने एकेडेमिक पेरेंट बैठा है, मतलब आई एम योर एकेडेमिक फादर। तो ये मैं बिल्कुल समझता हूं, और मैं उस फिलोसॉफी को लाइफ टाइम फॉलो करता आया हूं, तभी शायद मैं इधर अभी तक ये फील्ड में हूं। और आई एम श्योर काउंसिलर तक जो कंप्लेंट जाती होगी उसमें मेरा नाम नहीं होगा।
0: क्या बात है भैया, आपके नाम पे तालियां। ऐसा कोई ट्रिक है जिससे जल्दी से फिजिक्स को पढ़ा जा सके, आसान बनाया जा सके बतौर प्रोफेसर?
1: डेफिनेटली है। एग्जाम्पल तो आपके सामने खुद ही बैठा हुआ है, मैं खुद गुजराती मीडियम का बच्चा था तो जब मैं 11th स्टैंडर्ड में गया, सर वेलोसिटी वर्ड बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आता था। मैं पापा के सामने जाके रोता था, झगड़ा करता था कि आपने मुझे इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं डाला। पापा एकदम पेट्रियोटिक थे, बोले बस हम लोग इंग्लिश के स्लेव्स थे इसलिए मुझे तुझे नहीं डालना था, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इन 2 मंथ्स यू विल लर्न इंग्लिश। इसकी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। जब मैं बचपन में बड़े बड़े लोगों को पढ़ता था, लकीली हमारे टाइम पे टीवी सब नहीं होता था, तो ग्रैंड फादर और फादर हमको बोलते थे कि वेकेशन में अच्छी बुक्स पढ़ो, तो विवेकानंद जी को पढ़ता था, न्यूटन जी के थियोरीज पढ़ता था, आइंस्टाइन पढ़ता था, फिनमैन पढ़ता था। तब जाके बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि न्यूटन वॉज अ फिजिसिस्ट, न्यूटन वॉज अ मैथमेटिशियन एक्चुअली स्पीकिंग। तो फिजिक्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि फिजिक्स कभी भी पढ़ा नहीं जाता है, फिजिक्स लिखा जाता है। तो जो बच्चे 8th-9th में भी हैं अभी, और शायद उनके पेरेंट्स अभी मेरे सामने बैठे हैं, तो जब आपका बच्चा फिजिक्स पढ़ता है वो बात ही गलत है, फिजिक्स लिखने का सब्जेक्ट है। तो आपका फियर अगर 8th-9th से ही दूर हो जाएगा तो ये फियर ही नहीं रहेगा, फियर सिर्फ अपने दिमाग में होता है और कोई चीज नहीं है। तो अगर आप फिजिक्स पहले से लिखें, पढ़े नहीं, तो ये अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स में 80-90% फॉर्मूले होते हैं। अगर आप वो फॉर्मूले रटोगे तो फॉर्मूले कहीं ना कहीं आपको डीच करेंगे। अगर आप उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे, तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि आपके हाथ का कोऑर्डिनेशन आपके दिमाग के साथ होना चाहिए। आज सुबह कोई मुझे 2 बजे भी बोले कि नयन आपको लेक्चर लेना है, तो क्योंकि मैं कॉन्स्टेंट बोर्ड पे लिखता हूं, फॉर्मूले लिखता हूं, तो मेरी गलती होने वाली ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि आप ये पर्टिकुलर गाने के लिरिक्स बोलो, तो मैं उसमें डेफिनेटली गलती करूंगा, क्योंकि वो मैं गा रहा हूं मैं। तो फिजिक्स लिखने का सब्जेक्ट है, पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप ये बेसिक चीज पे हो सके, तो जब भी आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है स्कूल में, और जब आप फिजिक्स लेते हैं, तो आप तभी से ये आदत बच्चों को डालिए, गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, फिजिक्स इज मैथ्स, न्यूटन रोट द बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका, सो ही वॉज बेसिकली अ मैथमेटिशियन। आइंस्टाइन जी ने और जितने भी बड़े बड़े फॉर्मूले लिखे, इट इज प्योर मैथ्स। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है, मतलब आपको फिजिक्स नहीं आती है।
0: क्या बात है, बहुत सही बात कही है, और एक नई बात कही है कि फिजिक्स लिख के पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। हमारे जो दर्शक है उनको भी हम जोड़ना चाह रहे हैं। तो एक स्टूडेंट है वो लॉ कर रही है, और आए अपना परिचय दें और आकर सवाल पूछना चाहें।
2: नमस्ते टू एवरीवन, माय नेम इज तनुषा एंड आई एम डूइंग लॉ। हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारा स्ट्रेस होता है, सो हाउ डू वी डील विद दैट स्ट्रेस विच इज नॉट जस्ट एकेडेमिक रिलेटेड, वो बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हो सकता है, कि कुछ घर का प्रेशर हो या कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर एनीथिंग फॉर दैट मैटर।
3: सबसे पहले जो पैनिक अटैक है, इट इज एक्चुअली एक तरह की एंग्जाइटी है जो बहुत इंटेंस हो जाती है, तो उसको हम पैनिक अटैक कहते हैं। अब एंग्जाइटी और फियर में एक फर्क है। एंग्जाइटी एक ऐसा इश्यू है जहां, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, आप जंगल से जा रहे हैं, वहां कोई शेर नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो, इसको एंग्जाइटी कहते हैं।
0: जी।
3: जब शेर सामने आ जाता है और आप डरते हो, तो ये नेचुरल और नॉर्मल कहा जाता है, इसको फियर कहते हैं। घर पर अगर कॉन्स्टेंटली माहौल ऐसा है कि जो नहीं हुआ उसी के बारे में बातें करते हैं, आपने पढ़ाई नहीं की

0: तो आप फेल हो जाओगे, आप रसोई नहीं करते हो तो ससुराल में आपको डांट पड़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: प्रिवेंटिंग एन एक्सीडेंट एंड एक्चुअली क्रिएटिंग एन एंग्जाइटी स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंटिंग। ये माहौल जो बार बार मैं बता रही हूं, एंड आई फील सो सैड कि इस बच्चे के जो क्लीन स्लेट बन के आया था और आई थी, उसके ऊपर लिखने का जो काम है वो पेरेंट्स करते हैं और वहीं से शुरू होता है सारे प्रॉब्लम्स। तो ये एंग्जाइटी एंड ओवरथिंकिंग का जो एक स्टोरी है, ये आपके अंदर का स्क्रिप्ट है। आप बार बार अपने आप से क्या कहते हो, अगर ये नहीं किया तो ऐसा होगा, अगर ये वो नहीं किया तो ऐसा होगा, और ये स्क्रिप्ट बाहर सुनाई नहीं देता है। आप अपने आप अंदर इतना दोहराते हो उसको कि वो एक रियलिटी बन जाती है आपके लिए, और फिर एक्चुअल सिचुएशन आने से पहले ही आपको वो पैनिक अटैक, मतलब ये बॉडी भी वैसी मैजिकल है, आप उसको जैसे समझाओ ना वैसे ही चलता है ये।
1: क्या बात है,
0: तो
1: बहुत सही बात।
0: वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द राइट मैसेज टू योर बॉडी कि क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी, इट्स नॉट क्रिमिनल टू फेल। आप किस तरह से बातें करते हो अपने आप से, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर ये जो एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, इसके लिए काउंसलिंग डेफिनेटली वर्क्स, लेकिन समय पर अगर आ गए आप तो, वरना आपका ये पर्सनैलिटी बन जाता है, फिर आप एडल्टहुड में भी इसी तरह से कंडक्ट करते हैं और अपने बच्चों के लिए भी आप वही फैक्टर बन जाते हो। एंग्जाइटी, एंग्शियस पेरेंट्स क्रिएट एंग्शियस चिल्ड्रन। तो आपको ये जहन में रखना जरूरी है कि मैं हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बात करूंगी, एंड कीप योर सेल्फ ऑलवेज प्रिपेयर्ड। मैं ये नहीं, प्लान बी होना जरूरी है, प्लान सी होना भी जरूरी है आजकल। तो प्लान ए फेल्ड, नो प्रॉब्लम, प्लान बी इज इन प्लेस। और इफ यू आर आस्किंग मी हाउ डू वी हैंडल एंग्जाइटी, वी टेल देम कि आप ब्रीदिंग टेक्निक्स पे ध्यान दो, मेडिटेशन, योगा। ये सिर्फ 60+ के लिए नहीं है, आज के जमाने में एक 5 साल के बच्चे के लिए भी है। इफ यू लर्न हाउ टू हैंडल योर ब्रीदिंग, आई थिंक यू कैन कॉन्कर एंग्जाइटी अटैक।
1: नयन जी, हमें आप ये बताइए कि 10-12 घंटे कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फिर भी उनके मार्क्स उतने नहीं आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 6-7 घंटे में ही उम्दा अपना परफॉर्मेंस दिखा देते हैं।
2: अभी जैसे काउंसलर मैडम ने बताया, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूं। सी, सब लोगों के पास 24 घंटे होते हैं, तो आप अपने दिमाग को कितना पॉजिटिव रखते हैं और कैसे पढ़ते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने अपने मन में पहले से कोई सब्जेक्ट के लिए डर बना लिया है, मतलब आप पहले से अपने ब्रेन को समझाते कि ये मेरे से नहीं होने वाला है, ये मेरे से नहीं होने वाला है, बाद में बच्चा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एकदम सौतेला व्यवहार करता है, तो वो उसे होता ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं या तो जो भी कॉलेज में जाते हैं, मेरे हिसाब से आजकल का पूरा जो इंडिया का टाइम टेबल है, इट इज नॉट मोर देन 6 to 7 आवर्स। कोई भी स्कूल में कॉलेज में इतने से ज्यादा नहीं बिठा सकते। आपकी 7-7.5 घंटे की मेडिकल साइंस के हिसाब से साउंड स्लीप होनी चाहिए, तो पेरेंट्स ये बिल्कुल ऑब्जर्व करें। अगर कोई बच्चा सुबह 1 बजे 2 बजे पढ़ता है, तो माँ या तो पापा को ये खुश होने की जरूरत नहीं कि मेरा बच्चा कितना पढ़ाकू है, बहुत पढ़ता है, दैट्स अ रॉन्ग प्लानिंग, बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट अ मशीन, योर ब्रेन ऑल्सो नीड्स रेस्ट। तो आपके 6 घंटे शायद जो भी क्लासेस में जाते हैं या कॉलेज में जाते वो हो गए, 7.5-8 घंटे की पक्की नींद गिन लीजिए। आपकी लाइफ में 1 घंटा आपको जो भी स्पोर्ट्स पसंद है, जो भी, वो बिल्कुल होना चाहिए। इट मे बी वॉकिंग, इट मे बी स्विमिंग, इट मे बी साइकिलिंग, इट मे बी क्रिकेट, इट मे बी फुटबॉल। तो मेरी हर एक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चा कोई एक खेल खेलता है, 1-1.5 घंटा जाता है, तो आप उसको बिल्कुल मत रोकिए, बिकॉज दिस इज द स्ट्रेस बूस्टर, दिस इज वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप अगर बाकी के 6 घंटे भी पढ़ते हैं, तो देर इज नो रीजन दैट यू फॉरगेट इट, बिकॉज यू आर कीपिंग योर सेल्फ हैप्पी एंड यू आर स्टडिंग इट। When you study it out of pressure and when you study it out of entertainment, definitely आपके पढ़ने में फर्क होता है। See, as far as brain is concerned, some people are gifted. Let us not compare that way कि कोई बच्चा 3-4 घंटे पढ़ लेता है, उसको याद रह जाता है। ठीक है, उसका ग्रे मैटर वैसा है, उसके न्यूरॉन्स वैसे हैं, राइट? कुछ कुछ बच्चों को थोड़ा बचपन से, जैसे तो बच्चा ओवर थिंकिंग करता है, तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये बिहेव करना होता है। कभी आपके बीच में भी अनबन होती है, वो ठीक है, आप अपने तक रखें, बच्चों तक ये सब चीजें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको देखते हैं, आपको आइडल मानते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अगर खुशी खुशी कोई चीज

0: करते हो, खुशी खुशी जो भी चीज करोगे उसमें डेफिनेटली रिजल्ट आना है, डेफिनेटली रिजल्ट आना है।
1: तो यहाँ पर इंजीनियरिंग के एक छात्र बैठे हैं वेदांत, परिचय दे वेदांत और जो भी सवाल करना चाहते हैं पूछे।
2: नमस्ते, मेरा नाम वेदांत सावंत है और अभी मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मेरा हो गया है, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हूँ। तो मुझे सवाल पूछना है कि अब जब मैं मेरे सीनियर्स को देखता हूँ जो थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में, जो एआई का ट्रेंड आ रहा है जॉब मार्केट में, उसके वजह से बहुत सारे जॉब रोल्स भी कम हो रहे हैं, और बात आती है अपस्किलिंग, तो अपस्किलिंग जब हम शुरू करने जाते हैं एक और नई चीज मार्केट में आ जाती है, तो हम ये करें कि वो करें, बहुत कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं और उसके वजह से एक भी चीज ढंग से कर नहीं पाते। तो ऐसा बहुत लोग के साथ होता है, मैं भी खुद ये चीज फेस कर रहा हूँ, तो आपका क्या राय रहेगी इस पे?
3: आप इस जनरेशन के हो इसलिए आपके लिए सारी एक्टिविटीज एक मॉल की तरह है। हम जब छोटे थे ना तो हम एक टूथब्रश लेने जाते थे तो एक ही मिलता था, हम बड़े खुश थे। आज देखो क्या क्या नहीं है मॉल में, तो कंफ्यूजन इज इंक्रीजिंग। लेकिन एक तरफ से ये अच्छा भी है, आई वुड से यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, है ना। लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि आपके पास चॉइस बढ़ गए लेकिन आपको डिसीशन मेकिंग स्किल्स जो है ये आपके बहुत पुअर है। तो इसमें मैं कहूंगी कि आप पहले तो डिसाइड कर लो कि आपका गोल क्या है। जब आपका गोल ही बहुत एक्सेंट्रिक है या रियलिटी के आसपास भी नहीं है, या फिर आप मल्टीपल गोल्स लेके घूम रहे हो, ये नहीं तो वो नहीं तो, उसने किया तो मैं भी करूंगा, इसने किया तो इसमें बड़ा पैसा है, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आप नायन सर से भी मिलकर बात कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि वो जानते हैं आपको कि आपकी पढ़ाई का स्किल क्या है, एकेडमिकली हाउ आर यू। पेरेंट्स से ज्यादा शायद वो आपको एडवाइस दे सकते हैं कि किस तरह से आप अपने पाथ को अपने गोल की तरफ ले जा सकते हैं। अब गोल मिले ना मिले, मैं मानती हूं एज अ काउंसिलर डेस्टिनेशन जो भी हो जर्नी एंजॉयबल होना चाहिए।
4: क्या बात
1: है, सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात।
3: वरना क्या हो जाएगा, आप डेस्टिनेशन तो पहुंच जाओगे, इतने थक जाओगे आप कि आप उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात ये मैं कहूंगी जो मेरे जहन में रह गया है, और मेरा एक सौभाग्य रहा कि मैं एक मिस्टर बच्चन के साथ एक इंटरव्यू कर चुकी हूं और उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि एक इवेंट में वो पार्ट लेना चाहते थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, जिस दिन इवेंट था उस दिन सुबह उन्हें बुखार आ गया, तेज बुखार, वो पार्ट नहीं ले सके, खूब रोए, और आई थिंक ही वॉज इन डून स्कूल। तो उनके बाबूजी आकर उनसे कहे कि बेटा मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो और भी अच्छा है। तो वो समझ नहीं पाए, वो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, तो कि मन का ना हो तो उसकी इच्छा है। तो कभी कभी एक सबमिसिव लाइफ जीना भी, वो भी जीकर देख लो, यू माइट गेट द बेस्ट, यू डोंट नो। हमारा जो एफर्ट है वो 100% होना जरूरी है, लेकिन हर बार आपके ही मन का जो एआई प्रोग्राम किया या आपने जो सोचा वो शायद ना भी हो, हु नोज अनदर डोर विल ओपन। तो इस विश्वास के साथ आप जीते हो तो आई डोंट थिंक यू विल बी स्ट्रेस्ड आउट। मैंने अपने सेशन में कभी पेरेंट्स जब आते हैं तो मैंने मदर को पूछा है कि पिछले 6 महीने में लास्ट आपके हस्बैंड ने आपका कब प्रेज किया, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया हो और उन्होंने कहा वाह क्या खाना बनाती हो, ये कब कहा। तो दोनों नीचे देखते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि पापा कहते हैं कहने की जरूरत क्या है, जब 2 बार मांग के खाता हूं इसका मतलब अच्छा ही है। नाउ हियर आई वुड लाइक टू से कि सारे पेरेंट्स को मैं कहूंगी और टीचर्स को भी कि प्लीज ट्राई टू प्रेज योर चिल्ड्रन।
4: क्या बात,
3: छोटी छोटी बातें होती है, नॉट रिलेटेड टू स्टडी कि 90% आ गए तो वाह वाह, ऐसे नहीं। उन्होंने कुछ भी किया हो, आपके लिए कुछ कपड़े फोल्ड करके रख दिए हो, प्लेट्स रखे हो टेबल पर, या फिर कुछ अच्छी बातें कही हो, तो अपने शब्दों में आप जब उनको प्रेज करते हैं ना, व्हाट इज रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड। आप उसको रिवॉर्ड करते नहीं हो और सोचते हो कि टेकन फॉर ग्रांटेड, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट।
1: मतलब बच्चों के सामने उनकी प्रशंसा बहुत जरूरी है. हर घर में एक दूसरे की प्रशंसा जरूरी है, लेकिन बच्चों की प्रशंसा खास तौर से जरूरी है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए. अब हम नैन जी से जानना चाहते हैं कि जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं कॉलेजेस में, तो एनसीईआरटी की बुक्स की क्या अहमियत होती है, और साथ में ये भी बताइए कि इम्तिहान के पहले किस तरह से छात्र रिवीजन करे कि वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सके, मतलब कि मार्क्स उनके अच्छे आ सके.
0: अभी बच्चे जो भी संस्थान में जाते हैं पढ़ने, वहां पे रेगुलर बेसिस पे उनके एग्जाम्स होते हैं, और वो अपलिफ्टमेंट होता ही है पहले एक चैप्टर पे, बाद में दो चैप्टर पे, बाद में चार चैप्टर पे. ना एज फार एज एनसीईआरटी बुक्स आर कंसर्न, जब आप कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो नीट हो या जेडब्ल्यू मेन्स हो, उसका बेसिक बुक ही एनसीईआरटी है. लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो इन्फॉर्मेशन होता है उसकी एक एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक लाइन में से शायद 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो उसका डीप स्टडीज तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. एनसीईआरटी बुक्स इनफैक्ट आई वुड से बहुत, मतलब बहुत नॉलेजेबल लोगों ने लिखी हुई है, बहुत अच्छे बुक्स हैं. बट एज फार एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आर कंसर्न, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ एमसीक्यूज, द फुल फॉर्म इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो आप एनसीईआरटी बुक को सिर्फ बेस नहीं बना सकते हैं, दिस इज जस्ट अ रीडिंग बुक. उसके बाद में एप्लीकेशन जब आता है तब आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करने चाहिए. तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप अपना काम डिवाइड कर लें. अगर आपको फिजिक्स के 300 क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप रोज के 40-50 कीजिए. देखिए वैसे भी आपके पास टाइम लिमिट है, आप एक मिनट से ज्यादा नहीं ले सकते फिजिक्स के एक एमसीक्यू में. अगर आप जेडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर करते हो 2 मिनट से ज्यादा आप नहीं ले सकते. तो सबसे पहले आप जब भी घर पे प्रैक्टिस करते हैं हमेशा टाइमर लेके बैठे, और वो टाइमर कभी भी मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ वॉल क्लॉक या तो रिस्ट वॉच होना चाहिए. एज टीचर्स हम लोग भी जब क्लास में एंट्री करते हैं, आप कभी भी हमें फोन करिए 7:23 या तो 7:24, हम रिलीजियसली फोन को हाथ नहीं लगाते. बिकॉज सीधी सी बातें, बच्चा जो देखेगा वो करेगा. आज मैं बच्चों को बोलता हूँ मोबाइल फोन यूज मत करो, तो सामने सबसे पहले हमें वो बंद करना चाहिए. तो जब आपके बच्चे आपके सामने पढ़ते हैं, आप खुद अपना मोबाइल फोन भी दूर रख दीजिए, टीवी भी बंद कर दीजिए. जब अभी डैडी खुद आईपीएल देखते हैं और बाद में बच्चे को बोलते हैं तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है, तुम पढ़ाई करो, तो बच्चा एक अजीब तरीके से आपको देख के आपके अपने रूम में चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क होता है, पापा व्हाट आर यू डूइंग. सो सबसे पहले मैं बार बार काउंसिलर मैडम से इत्तफाक रखूंगा कि योर किड्स फॉलो यू, सी यू नो यू आर देयर रोल मॉडल्स. तो एनसीईआरटी बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आपके पास आपके टीचर्स जो भी अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनको पता ही होता है कि एमसीक्यू उसके कौन से बुक्स अच्छे हैं. आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं, मान लीजिए आपके पास 6 घंटे बचते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे मैथ्स करें. हो सकता है आपको मैथ्स वास्ट है, उसके लिए 2.5 घंटा लगे, तो आप उसको 2.5 घंटा दे दीजिए, केमिस्ट्री को 1.5 घंटा दे दीजिए, फिजिक्स को 2 घंटा दे दीजिए. वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, इट इज अ वेरिएबल थिंग. लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन है इंजीनियरिंग कॉलेज का हो चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, आपका एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है. सो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस रोज करें, और अगर आप उसको रोज का रूटीन बना लेंगे, अब जैसे हम रोज सोते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज लंच लेते हैं, रोज नहाते हैं. मैं स्टूडेंट्स को कभी कभी ये बोलता हूं कि ये आजकल के जमाने में आया हुआ ये वर्ड है स्ट्रेस. यहाँ पे जितने भी नॉलेजेबल लोग मेरे साथ में पैनल पे बैठे हुए हैं, 30 साल पहले मैंने ये वर्ड कभी नहीं सुना था. मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये वर्ड सुना था. देयर इज अ चैप्टर इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. आजकल हम लोग जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी हो आपके हाथ में छाले आ गए स्ट्रेस की वजह से, आपको हार्ट अटैक, अभी हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, समझ में आ रहा है. आज अभी मुझे बहुत ज्यादा पसीना होता है, नहीं नहीं स्ट्रेस की वजह, अरे बाबा मेरा इंटरनल हीट उतना है. तो स्ट्रेस वॉज नेवर अ वर्ड 30 years back, 25 years back, 20 years back. अभी मुझे लग रहा है ये वर्ड इतना ज्यादा रूटीन हो चुका है. हो सकता है मेडिकल एक्सपर्ट शायद ये वर्ड यूज करते हो और वो टाइम पे शायद ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ हो, मुझे सिर्फ यंग जनरेशन को इतना ही बोलना है कि जब कोई चीज नहीं आती, कोई नई चीज इन्वेंट होती है, हम लोग पहले लैंड

0: लैंडलाइन फोन पे थे, फिर पेजर आया, फिर मोबाइल फोन आया, तो हम लोग वो नई नई टेक्नोलॉजी सीखते गए कि नहीं। तो जैसे आप टेक्नोलॉजी नहीं आती तो नेचुरली उसके बारे में सीखना भी होता है। इंजीनियर्स लोग सीखते हैं, वो सब डिजाइन करते हैं, तो आपको किस बात का स्ट्रेस है? आज बच्चा पीसीबी ले चाहे पीसीएम ले, उसको फिजिक्स करना ही करना है, चाहे उसको पसंद हो ना हो। एक सिंपल सी बात है, आपके आजू बाजू में जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है, चाहे आप वो गाड़ी ले लो, चाहे मोबाइल ले लो, जितनी भी चीजें ले लो, वो सब में फिजिक्स है। वो सारी चीजें आपको यूज करना पसंद है, लेकिन वो चीजों के बारे में आपको सीखना नहीं है। मतलब एक टायर पंक्चर हो जाएगा तो आप मैकेनिक को ढूंढोगे, आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर एक जन इंजीनियर होना चाहिए या तो डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अगर आपने साइंस लिया तो अपनी इच्छा से लिया है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसके लिए हार्डवर्क कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस आपके पास आना ही है। आपने ऐसा सब्जेक्ट लिया कि जिसकी बहुत डिमांड है और उसकी डिमांड कभी नहीं जाने वाली है, आप बस थोड़ा उसके पीछे हार्डवर्क डालो और सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा आपको।
1: यहाँ दर्शकों में भावना इस समय बैठी हैं और तो वो कुछ पूछना चाहती हैं।
2: मैं भावना हूँ, यहाँ पे इंजीनियर हूँ। तो अब दिक्कत ये हो रही है मेरे साथ, जैसे बोलते हैं कि जैसे पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, तो दोनों बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो बड़ा बच्चा था वो बचपन से काफी ब्रिलियंट रहा, वो छोटा थोड़ा सा उससे एवरेज है। उसके मन में ये आ जाता है कि भैया ने इतना किया है तो पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन मेरे से उतनी इक्वली होगी, जबकि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके लिए बिल्कुल लिबरल हूँ, लेकिन वो अपने आप से जो प्रेशर ले लेता है, सिबलिंग प्रेशर को कैसे डील करें, और बच्चा खुद से ले रहा है स्ट्रेस।
3: ऐसे सिचुएशन में हम बच्चे को बुला के पूछते हैं कि पेरेंटल प्रेशर है या नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि प्रेशर नहीं है और मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन अक्सर ऐसे होता है ना कि कम्युनिकेशन वाइज वी डोंट शो द प्रेशर, बट हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं उसमें वो प्रेशर दिखाई देता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि सब तरीके से आपने पॉजिटिव कम्युनिकेट भी किया हो, लेकिन बच्चे के अंदर वो शायद एक फीलिंग आ जाती है, इट्स वेरी नॉर्मल, तो कुछ समय तक वो रहने वाला है। सो आई वुड से एज लॉन्ग एज इट इज नॉट, कोई हार्म नहीं हो रहा है उसको, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और वो अपना नॉर्मल सब कुछ कर रहा है, मतलब ये कभी कभार वो जर अगर बात बता भी देता है तो उस समय आपको उसे हैंडल करना है ये बताकर कि सब सेम नहीं होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं जहां बच्चे अलग अलग हैं लेकिन उन्होंने अलग अलग अपने फील्ड में शाइन किया हो। हम काउंसलिंग में कहते हैं कि इसको किड ग्लव्स के साथ हैंडल करना है। किड ग्लव्स मतलब इसके प्रति थोड़ा और ध्यान देना होगा, या आउटशाइन करने के लिए कुछ ऐसा गलत कदम ना उठाए। समटाइम्स इट हैपन्स कि अटेंशन सीक करने के लिए या आपका अटेंशन ज्यादा मिले उसकी तरफ, इस तरह से भी आप कुछ व्यवहार कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जब बात कोई आता है ना बाहर से और आप उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं या उनके जो अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो यंग पर्सन जो बैठा है ना वो सुनता है, लेकिन हम भूल जाते हैं वो, क्योंकि हम फ्लो में बहुत कुछ भूल जाते हैं। इसने ये किया, उसने ये किया, उसको ट्रॉफी मिल गई, अभी इसने ये किया और उसका कुछ नहीं बोलते हम, तो वो समझ जाता है, ये माइंड ऐसा है। लेकिन एज अ पेरेंट आई वुड से ये दिमाग में रखना जरूरी है कि इफ ही इज नॉट देयर और आपने उसे प्रेज किया किसी के सामने, दैट्स फाइन
1: जी,
3: लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बार बार कि जब वो छोटा है वहां पर आप क्या बोलती हो और किसके साथ बात कर रही है।
1: जी जी,
3: ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
1: मुंबई का एक कॉलेज है नरसिंह मोजी कॉलेज, जिसकी प्रोफेसर ममता झा यहाँ आई हैं, वो कुछ पूछना चाहती हैं।
4: नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता झा पिछले 28 वर्षों से नरसिंह मोजी कॉलेज में हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। तो मेरा ये पूछना है आपसे सुमति जी से कि जो बच्चा 11वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में होता है, जो पहले दृश्य में नहीं देखती थी, आजकल बहुत फिजिकल लड़ाई करने लगे हैं,
1: हिंसात्मक
4: हो गए हैं बहुत ज्यादा, और हमारे सामने लड़ते होते हैं और सरकार का नियम है कि हम बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते हैं, तो उस वक्त हमें लगता है कि हम क्या करें, हम अपने आप को इतना असहाय महसूस करते हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, एक तो ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि वो जो बच्चा, जैसे आपने कहा कि सबब से आता है या हमारे यहाँ विरार और वहां से आते हैं बच्चे, तो वो बहुत ही अकेलेपन में अपना पूरा 12th निकालता है और फिर डिसाइड करता है कि अब मुझे नहीं आना है, तो

0: उस बच्चे के साथ हम कभी समझ भी पाते हैं, क्योंकि क्लास में 120 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें 6 महीना 7 महीना लग जाता है उस अकेले बच्चे को ढूंढने में भी। तो ढूंढकर जब तक होता है तब तक वो शायद कॉलेज आना भी बंद कर देता है या अपने आप में घुटकर रह जाता है। तो एक शिक्षक के नाते मैं उसकी उसको उसकी परेशानी को कैसे दूर कर सकती हूँ?
1: आजकल जो ये फिजिकल वायलेंस दिखता है, ये आपको शायद बहुत मतलब रोड पे भी दिखेगा, आपको रोड रेज जिसे कहते हैं। इनका टेम्परमेंट बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज इनके साथ पॉसिबली ये है कि वट एवर मैंने डिसाइड किया वही होना चाहिए, ये शेयर करना नहीं चाहते हैं या फिर टीम वर्क में पार्ट लेना नहीं चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इफ यू एक्चुअली सी विदाउट रीजन किसी ने अटैक किया हो, आप पूछेंगे तो सही कि बात क्या थी। अगर आपको लगता है कि बहुत मामूली सी बात थी और इन्होंने बहुत ज्यादा इंटेंस वायलेंटली अटैक किया है, आई थिंक दैट कॉल्स फॉर अटेंशन टू सेंड टू द काउंसिलर, कि वहां पर फिर वो उन्हें संभाल लेते हैं कि किस तरह से अपने टेम्पर को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से वो लोगों के साथ बैठकर भी वो अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं।
2: जी बिल्कुल सही कह रही हैं।
1: और आपका दूसरा सवाल कि अकेले जो बैठते हैं, ये मैंने भी देखा है, इनफैक्ट वो आते हैं मेरे पास एंड दे फील कि उन्होंने ये गलत डिसीजन लिया इस कॉलेज में आकर। ऐसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जो सेकेंड या थर्ड ईयर पर चेंज करके निकल गए हैं। अगर वो खुद चेंज हो सकता है और विच इज वेरी डिफिकल्ट, नहीं तो यहाँ पे प्रिंसिपल कॉलेज इन सब का हेल्प लेकर उसको हेल्प करना जरूरी है।
0: अभी हमने देखा है कि बच्चों में 11th 12th के स्टूडेंट्स विपिंग करते हैं, या विपिंग ही कहते हैं उसको जो इलेक्ट्रिक वाला है, और फिर सडनली चूंकि सब जगह कैमरे लगे होते हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो वो उससे पता चलता है, तो उसके बाद

0: करियर और समथिंग, ये जो अभी उसका जो एज है ना, कि बहुत सारे सवाल और ऐसे सवाल जो हमको अनकंफर्टेबल करते हैं, या उसको जब तक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है वो कन्विंस नहीं होती है, या ये फेज में मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उसे झूठ बहुत बोल रही हूँ.
1: ओहो
0: फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी उसको डराना है, तो पहले तो मैंने उसको ऐसे ग्रो अप किया था कि भूत होता नहीं है लाइफ में. वो मैंने उसको इतना अच्छा सिखा के रखा था कि अब मुझे उसको सुलाने के लिए बताना पड़ता है कि है भूत. तो मतलब दिस हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स थिंग विद मी टू हर, क्योंकि क्या होता है, कम्युनिकेशन इतना हम दोनों में बढ़ गया है ना. वो 6 साल की है, तो मैं सच में परेशान होती हूँ उसके क्वेश्चंस को लेके. मरते हैं मतलब क्या है, या मतलब बहुत सारे सवाल. तो उसमें क्या होता है, हर चीज हम उसको उनको उतनी नहीं बता सकते, फिर भी मैं बताती हूँ. जैसे उसको लगता है पुलिस ही नहीं होना चाहिए, मतलब पुलिस दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि उनको देख के उसको डर लगता है. कंफर्टेबल कैसे होना चाहिए ये रिलेशनशिप.
1: आप आई वुड से लकी हैं कि वो इतना बात करती है। बहुत
2: क्या
1: सारे
2: बात
1: पेरेंट्स आते हैं कहते हैं हमारी बच्ची तो बात ही नहीं करती है, कोई पूछते भी नहीं है।
2: है वो ज्यादा मुश्किल है।
1: वो ज्यादा मुश्किल है। सो दीज आर द फॉर्मेटिव ईयर्स जहां बच्चा बहुत कुछ जानना चाहता है और जानना चाहती है। तो मैं कहूंगी यू आर वेरी लकी, सो डोंट फील अनहैप्पी। बात रही कि आप क्या जवाब देंगे, मेरा कहना ये है कि ऑनेस्ट आंसर्स देना चाहिए। भूत है ये डराना ये सही नहीं है,
0: बिल्कुल, वो
1: क्योंकि
0: मुझे भी
1: आपने
0: लगता
1: देखा
0: है.
1: नहीं ये भूत
0: हाँ
1: को, तो आप कैसे कह सकते हो भूत है ना।
2: बिल्कुल सही बात है।
1: अब कितना कहना है ये आपकी विजडम और इंटेलिजेंस पर निर्धारित है, लेकिन जहां तक जवाब देने का सवाल है आई वुड से बी ऑनेस्ट।
0: ऑनेस्ट.
1: बट इतना भी डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है जो उसके ऊपर से जाए, उतना ही दो जितना वो समझ सके। एंड ट्रूथफुल आंसर्स आर बेस्ट आंसर्स। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप सही जवाब दो एंड बी हैप्पी दैट दे आर क्वेश्चनिंग। वेरी गुड।
2: बिल्कुल।
3: मैं जयंत पात्रिकर, वरिष्ठ उद्घोषक, विविध भारती। अभी जो बात चल रही थी उससे से जुड़ा एक सवाल है कि पिछले 20-25 सालों में एक शब्द कॉइन हुआ है, कॉन्शियस पेरेंटिंग। तो ये कहां तक कारगर सिद्ध हुआ है? हर बच्चे की अपब्रिंगिंग अलग तरह से होती है।
1: डेफिनेटली।
3: हाँ, तो उसकी
1: इसलिए
3: उनके पेरेंट्स
1: उसकी
3: की काउंसलिंग एक जैसे कैसे होगी?
1: एक जैसे पेरेंट्स की काउंसलिंग करते नहीं है, वन साइज डजंट फिट ऑल, हम कस्टमाइज करते हैं।
3: अच्छा। हाँ,
1: मतलब पेरेंट्स को पहले पूछते हैं
3: जी,
1: कि उनके
3: जी,
1: घर पर कौन कौन है।
3: हाँ,
1: वो कहाँ तक किस माहौल में रहते हैं, कौन सा मतलब व्हाट प्रोफेशन आर दे इन,
3: जी,
1: तो एक अंदाजा आ जाता है कि इसकी समझ कितनी है।
3: ओके।
1: और फिर जब एक दो सेशन होते हैं तो हमें उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में भी समझ आ जाती है, और इन दोनों के बीच की इक्वेशन क्या है ये जानना भी जरूरी है। आई कांट क्रिएट अ वॉर बिटवीन हस्बैंड वाइफ आफ्टर काउंसलिंग सेशन।
2: जी, ये बहुत सही बात कही आपने।
1: दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं चाहती हूँ वो हंसते हंसते निकले और सेकेंड सेशन आए।
2: जी,
1: तो माई चैलेंज इज गेटिंग देम फॉर द सेकेंड सेशन। पहले मैं सिर्फ अंदाज लगाती हूँ, दूसरे में अपना कुछ उनसे पूछती हूँ, तीसरे में उन्हीं को अकाउंटेबल बनाती हूँ कि वही सजेशन देते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपका लाइफस्टाइल क्या है, उसके बाद सो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट ऑफ एवरीथिंग।
2: जी, एक नन्ही छात्रा आई है, अपना नाम बताइए बेटा।
4: नमस्ते, मेरा नाम श्रिया है। नाउ आई एम इन 6th स्टैंडर्ड इन सेंट रॉक्स हाई स्कूल एंड आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि जब हमारे एग्जाम्स होते हैं, जो हमारे मुश्किल सब्जेक्ट्स है जस्ट लाइक साइंस एंड हिस्ट्री, उसके जो बड़े आंसर्स रहते हैं उन्हें हम जल्द से जल्द और आसान तरीके से कैसे याद कर सकते?
2: ये तो मुझे लगता है इसका आंसर नयन सर दे पाएंगे। कहिए नयन सर, बताइए। आप मुश्किल में पड़ गए हमें लगता है।
5: भले आज मैं टीचर हूं, लेकिन मेरे भी 2-3 नापसंदीदा सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। मुझे सिविक्स कभी पहले नहीं पड़ी थी, मेरी एलजिब्रा बहुत अच्छी थी, ज्योमेट्री में मेरे हमेशा 10-12 मार्क्स आते थे, हालांकि मैं स्कूल में टॉपर था। तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, जब आप 10th स्टैंडर्ड के बाद अपनी करियर चूज करोगे तो आपके नापसंदीदा सब्जेक्ट्स निकल जाएंगे। एक ही सजेस्ट करूंगा कि जब आपको ऐसे क्वेश्चंस जब मुश्किल वाले लगते हैं कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, उसके कुछ कुछ वर्ड्स आप अंडरलाइन कर लो, तो वर्ड के आगे पीछे के वर्ड्स आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उसका जो मेन वर्ड होता है, आप जैसे

0: एक कोई डेफिनेशन होती है, आपने उसका एक वर्ड दिमाग में याद रख लिया तो उसके आगे पीछे अपने आप सेंटेंस बैठता है। तो वो सारी चीजें आपकी वक्त के साथ निकल जाएगी। यू आर टू यंग सो डोंट वरी अबाउट दिस, राइट। सबसे मेन हैप्पी माइंड के साथ पढ़ो, ओके।
1: बहुत बहुत शुक्रिया नयन सर, आपने इतने अच्छे से जवाब दिया। दरअसल ये चर्चा ऐसी है, विषय ऐसा है, ऐ जिंदगी गले लगा ले, कि अंतहीन है। अब लेकिन आखिर में जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, और अपने श्रोताओं को बता दें कि विभा जी फिल्मी दुनिया में लेखिका हैं और कुछ सीरियल्स और फिल्में भी को प्रोड्यूस की हैं और डायरेक्ट भी करने की ख्वाहिश रखती हैं। तो विभा जी, अब आप माइक लीजिए और बताइए आज की चर्चा से क्या कुछ निचोड़ निकलता है।
2: विद भारती के श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी, इतना बढ़िया सृजन भारती कार्यक्रम, इतने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा। सच कहूं तो मैं तो यहाँ बैठ के सुनते ही जाऊं, इतना अच्छा लगा, इतनी दिलचस्प बातचीत हुई है, इतना सीखने को मिला है। फिजिक्स मेरा स्ट्रांग सब्जेक्ट नहीं था, मैं आज भी फिजिक्स सीखना चाहती हूँ।
1: क्या बात।
2: और
1: है,
2: आपने कहा कि मैं ऑनलाइन जा के सोचती हूँ कि मैं कुछ करूँ, बट यू सेड फिजिक्स इज राइटिंग, तो अब मैं वो अप्लाई करके देखती हूँ मुझे कितना समझ आता है। डॉक्टर ओझा ने जितनी भी बातें की हैं बच्चों के विषय में, पेरेंट्स के विषय में, आई विश कि ये बात दूर दूर तक फैले, सबको समझ आए, सब सुने। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बच्चे को टीचर ने पूछा कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो उसने बच्चे ने बोला कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो टीचर ने बोला तुम्हें सवाल समझ नहीं आया, तो बच्चे ने बोला आपको जवाब समझ नहीं आया।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: तो ये मेरा नहीं है पर मैंने कहीं पढ़ा है, तो आप मेरे लिए तालियां बजा दिए, बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि असफल जब हमको लगता है कि हम अभी असफल हुए, तो क्या होता है कि हमको गुस्सा आता है, हम किसी को ब्लेम करना चाहते हैं, हम नाराज होते हैं। हिंसा की बात की आपने, तो ये सब होता है, नेगेटिव फीलिंग होती है, सबको ही आती है। हम भी कोई चीज हम चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ चाह रहे हैं वो नहीं हुआ, हम सब नाराज हो जाते हैं, तो वो तो होता ही है। पर उसको अगर हम चैनलाइज कर लें, इसमें भी फिल्मी जगत का हेमा मालिनी जी ने ये किस्सा बताया था कि वो टीनेजर थी जब वो अपनी पहली फिल्म के ऑडिशन के लिए गई थी
1: जी,
2: तो उनको प्रोड्यूसर ने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि तुम कभी हीरोइन नहीं बनोगी। इनको जब रिजेक्ट कर दिया था तो ये बहुत गुस्सा हुई थी और इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं एक फिल्म में तो हीरोइन बन के दिखाऊंगी, मैं इस प्रोड्यूसर को दिखाऊंगी। तो उनका जो गुस्सा है उन्होंने चैनलाइज किया पॉजिटिवली, ताकि वो किसी फिल्म में हीरोइन बनी। और उसके बाद तो स्वप्न सुंदरी हैं आज। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। तो प्रोफेसर वर्मा ने जो एक बात कही कि आप इलास्टिक होइए, स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस के पहले छोड़ना है छोड़ दीजिए, टूटने पे मत आ जाइए। पेरेंट्स को सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, दोष दिया जाए या क्रेडिट दिया जाए, डॉक्टर ओझा कह रही हैं कि पेरेंट्स का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ऑपरेशन होता है बच्चों पे। तो मैं आखिर में एक चीज कहना चाहूंगी, मेरी एक फिल्म है जिसका डायलॉग है, फिल्म अनरिलीज्ड है अभी, भगवान को हम बोलते हैं कि आप बच्चे बनाते हैं तो साथ में एक मैनुअल क्यों नहीं बना देते
1: जी,
2: कि
1: जी।
2: बच्चों को कैसे पाला जाए। तो भगवान ने कहा कि हर बच्चा यूनिक होता है, अलग होता है, तो मैं अब बच्चे बनाऊं कि मैनुअल बनाऊं। तो बच्चे ने बोला कि मैंने भी भगवान से पूछा कि कम से कम बच्चों को एक मैनुअल दे दो कि माँ बाप को कैसे हैंडल किया जाए
1: जी जी।
2: तो भगवान ने बोला हर बच्चे की तरह हर माँ बाप यूनिक होता है
1: जी। क्या बात
2: तो
1: है, बहुत
2: अगर
1: बढ़िया।
2: वो समझदार है तो उनको सुन लो, और अगर तुम ज्यादा समझदार हो तो उनको समझ लो। तो बस यही है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी, वक्त निकाल के आप आई, अपनी फिल्मी दुनिया की तमाम व्यस्तताएं होती हैं हम समझ सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नयन जी आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे विविध भारती की सृजनात्मक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत संपन्न हुए कार्यक्रम ऐ जिंदगी गले लगा ले, इसके संपादित अंश। इस कार्यक्रम में

0: प्रतिभागी थे प्रोफेसर नयन वर्मा, समुपदेशक एवं मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक डॉक्टर सुमति ओझा और फिल्म लेखिका विभा सिंह। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया था ममता सिंह ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का विविधा कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल और आज आपके साथ मैं हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे उस खास दिन के बारे में जो आज है, जिंदगी का वो खास हिस्सा जिसके साथ हंसी भी खुलकर आती है और छोटी छोटी बातें भी यादगार बन जाती हैं। कुछ दोस्त रोज मिलते हैं तो कुछ दूर रहकर भी हमेशा दिल के करीब रहते हैं। मित्रता दिवस के इस खास मौके पर आइए अपने सभी दोस्तों को एक प्यारी सी मुस्कान और ढेर सारी शुभकामनाएं दें। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं दोस्ती के रंग में रंगे कुछ बेहतरीन गीत। आगाज कर रहे हैं सुहाग फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह ने, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हम बात कर रहे हैं आज दोस्ती की, दोस्ती से भरे गानों की। तो लीजिए ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी धुन बनाई है। फिल्म का नाम नसीब।

दोस्ती से भरे ओतप्रोत, दोस्त और मित्रता की भावना से भरे गीत आज आप सुन रहे हैं। आइए कालखंड में थोड़ी छलांग लगाते हैं और आते हैं उस दशक में जब थोड़े नए तरीके के कुछ गीत दोस्ती को लेकर बनाए गए, जब दोस्ती की परिभाषा में भी कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आया। लीजिए अब सुनते हैं कुछ कुछ होता है इस फिल्म का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, समीर की रचना, जतिन ललित का संगीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: और आइए अब विविध भारती पर सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम दिल चाहता है। शंकर महादेवन, शान और केके की आवाजों में ये गीत है। बोल जावेद अख्तर के शंकर एहसान लॉय की धुन।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं शांतनु मोइत्रा के संगीत निर्देशन में स्वानन किरकिरे की लिखी ये रचना। सोनू निगम ने इसे स्वर दिया है और फिल्म का नाम 3 इडियट्स।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस संदेश से पहले आपने सुना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म का गीत। आवाजें थी डोमिनिक सेरेजो, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेजो की। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत कॉकटेल फिल्म से। नीरज श्रीधर और कविता सेठ ने इसे आवाजें दी हैं। इरशाद कामिल की रचना है, प्रीतम का संगीत।

तो साथियों, आज का ये दोस्ती से भरे गीतों का सफर आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। अपनी पसंद आपकी क्या थी और कैसा आपको ये पूरा प्रोग्राम लगा जरूर बताइएगा। इसी के साथ नेहा अगरकर देसाई को कार्यक्रम यादों की महफिल से दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में हम हर रोज आपसे एक इबारत के साथ मिलते हैं और आपको उन इबारतों से कुछ शब्द चुनने होते हैं। जी हाँ, वही शब्द जिनसे हम गाने सुनवाने वाले हैं उनके कयास आपको लगाने होते हैं। तो चलिए जुड़ जाइए हमसे फेसबुक पर ताकि आप और हम कमेंट्स के जरिए आपसे संपर्क कर सकें और एक दूसरे की बातें जान सकें। हाँ हाँ, इबारत से जुड़ी बातें। कई श्रोताओं ने इस कौन से गीत बजने वाले हैं इस कार्यक्रम में उसका अंदाजा लगा लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस इबारत को पढ़ देते हैं। तो आज की इबारत है, कलम सिर्फ लिखने का जरिया नहीं जिम्मेदारी भी है। जो इसकी अहमियत समझते हैं वे इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करते, क्योंकि कलम का हर गलत इस्तेमाल उसकी गरिमा को थोड़ा और कम कर देता है। ये वही ताकत है जो विचारों को दिशा देती है, सच को आवाज देती है और समाज में बदलाव की नींव रखती है। इसलिए इससे निकला हर शब्द सोच समझकर संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ लिखा जाना चाहिए। याद रखिए, शब्द मिटाए जा सकते हैं लेकिन उनका असर अक्सर हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए अपनी कलम को हमेशा सत्य, सकारात्मकता और इंसानियत का साथी बनाइए। तो कौन से हो सकते हैं वो शब्द जो आज की इबारत में भी है और आज के गीतों में भी? चलिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हम से मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाजें, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

जी हाँ, तो आपकी टिप्पणियों की भरमार लग चुकी है और हमारी एक साथी ने लिखा है, कलम की कमाल और कलात्मकता दर्शाती इबारत, काल प्रवाह के कालांतर ने काल क्रम में कलम की कौशल कृत्य को सदैव आत्मसात किया है। इसकी रोशनाई से रोशन हुई सुप्त दीपशिखा की ज्योति को ज्वाला बना ज्वालामुखी तक अंजाम देने में सक्षम है। उपदेशात्मक सकारात्मक विचारपूर्ण सृजनशीलता बोध कराती संगीतमय सफर का इंतजार रहेगा। जी हाँ, तो ये सफर शुरू हो चुका है। एक साथी लिखते हैं, कलम और क्रांति एक जोड़ है जो सदियों से समाज को एक शिक्षा और ताकत देती है, आजादी देती है अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक तरीका। परंतु आजादी में अच्छे बुरे की समझ जरूरी है। जो हमें पसंद नहीं वो कलम से या जुबान से व्यक्त ना हो, ये दायित्व रहे। आज के गीतों में ये माटी, अच्छा इन्होंने गीत भी बताए हैं कि ऐसे गीत कुछ शामिल हो सकते हैं। एक साथी ने लिखा है, कलम दवात वो वस्तु है जो बचपन में प्रथम कक्षा से ही नन्हे हाथों में देकर अपना भविष्य संवारने हेतु दी जाती है। कलम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बचपन से किताबों में पढ़ते और सुनते आए हैं कि आजादी की लड़ाई में कलम की विशेष भूमिका रही। आज भी हम अपनी बात कलम से ही लिख रहे हैं, लेकिन वो डिजिटल हो गया है। लिखने से याददाश्त अच्छी रहती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं। अच्छा हाँ, एक बात तो हम भूल ही गए कि ये जो पहला गीत आपने सुना, इस का जो शब्द था जो हमारी आज की इबारत में भी था वो था कलम। और आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, बताइएगा कौन सा शब्द है। अनपढ़ फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खां ने इसे लिखा है, मदन मोहन का संगीत।

शायद इस शब्द का कयास लगाना थोड़ा सा जटिल महसूस हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, यहाँ पे शब्द था समझा। जी हाँ, इबारत की लाइन है जो इसकी अहमियत समझते हैं। तो समझते से हमने लिया है समझ ये शब्द, और समझा इस गीत में शब्द शामिल था। और हमारे कई श्रोताओं ने लिखा है कि उनका पहला गीत शामिल हो चुका है। एक साथी लिखते हैं, शुरुआत में जब हम छोटे थे तब स्लेट और चौक से लिखना सीखते थे, फिर कॉपी और पेंसिल से लिखना शुरू किया। जब गलत होता था तो रबर से मिटा लिया करते थे। क्लास 6 से पेन मिला करता था, वो भी स्याही वाला। स्याही खत्म होने पर फिर से स्याही भर लेते थे। वहीं एक साथी ने लिखा है, बोला हुआ भुलाया जा सकता है पर लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता। एक साथी लिखते हैं, कलम की ताकत का सीधा और मुख्य अर्थ वैचारिक क्रांति, सामाजिक सुधार और अज्ञानता के खिलाफ आवाज उठाना है। ये शाश्वत सत्य को रेखांकित करता है कि इतिहास गवाह है कि जो काम बड़ी बड़ी सेनाएं या तलवारें नहीं कर पाई, वो काम एक लेखक पत्रकार की कलम ने कर दिखाया है। कलम की ताकत असीमित है, लेकिन इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि इसे चलाने वाले का उद्देश्य क्या है। यदि कलम का उपयोग सकारात्मकता, न्याय और सत्य के लिए किया जाए तो ये समाज के लिए वरदान है, लेकिन यदि इसका उपयोग झूठी अफवाहें या नफरत फैलाने के लिए हो तो ये विनाशकारी भी हो सकती है। और इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। शब्द जरूर पहचानिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा। पतंगा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, इंदिवर के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं, 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और साथियों, जैसा कि इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था वही जो आप सभी ने सही पहचाना है, थोड़ा। तो थोड़ा शब्द हमारी इबारत में भी शामिल था। और कई लोगों ने लिखा है पिछले कुछ गीत को लेकर कि इसमें तो कई सारे शब्द हैं। तो शब्द तो कई सारे हैं, लेकिन हमारी इबारत से कौन सा शब्द जुड़ता है वो आपको पहचान कर बताना है। तो अब आप कयास लगाते रहें और हम आपको गीत सुनवाते रहेंगे। एक साथी ने लिखा है, कलम तलवार से भी ज्यादा तेज होती है, सोच बदल देती है, एक लाइन किसी का दिन बना सकती है और एक लाइन किसी की जिंदगी भी, इतिहास लिखती है, बड़े बड़े आंदोलन, क्रांति, संविधान सब कागज और कलम से शुरू हुए, दिल जोड़ती है, चिट्ठी, कविता, कहानी, दूर बैठे लोग भी कलम से करीब आ जाते हैं, सच बोलती है, जब आवाज दब जाए तब भी कलम सच लिखती रहती है। तो इसी तरह जो कलम का काम है वो बड़ा अनोखा होता है। एक साथी ने लिखा है कि हमारे देश में जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने हमें अपनी कलम के जरिए बहुत अच्छी शिक्षा दी है। अगर उनकी कलम में कहीं चूक हो गई होती तो शिक्षा का अर्थ ही शायद अर्थ न रहता। पर चाहे लेखन कैसा भी हो, सार्थक होना चाहिए, चाहे कविता हो, साहित्य हो, गीत हो, चाहे प्रेम पत्र ही क्यों ना हो, अगर कलम में ताकत हो अर्थात कहीं कोई खामियां ना हो तो ये अच्छा रहता है। तुम इन्होंने और भी कुछ गीतों के भी इन्होंने सुझाव दिए हैं कि ये गीत आज हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या इनमें से कोई गीत आज बजने वाला है। नदिया के पार, इस फिल्म से सुनिए ये गीत, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, गीत संगीत रविन्द्र जैन का।

किसी श्रोता ने बड़ी अच्छी सी पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, चलिए पढ़ते हैं। लेखनी जब हाथ में आती, मन की हर धड़कन कह जाती, जो शब्दों में ना ढल पाए, स्याही बनकर कागज पर छा जाए। लेखन केवल अक्षर नहीं, जीवन का मधुर सफर यही। कभी हंसी की मीठी धुन है, कभी आंसू की मौन लगन है। लेखन से विचार संवरते, बिखरे सपने फिर निखरते। सच की लौ जब इसमें जलती, अंधियारी राह भी उजली लगती। कलम की अपनी एक कहानी, बदल दे दुनिया बदले जवानी। शब्द अगर हो प्रेम से भरे, हर दिल में विश्वास उतरे। आओ ऐसा लेखन करें, मानवता का दीपक धरें। हर पंक्ति में हो सत्य का मान, यही लेखनी का सच्चा सम्मान। बड़ी ही खूबसूरत पंक्तियां ये थी। साथ ही एक साथी ने बड़ी मजेदार बात लिखी है। इन्होंने लिखा है, जब मैं कागज कलम लेकर बैठता हूं तो मुझे नींद बहुत जल्दी आ जाती है, पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। अब एक राज की बात अगर बताएं तो पढ़ाई के दिनों में मेरे साथ भी ऐसा होता था। और मुझे लगता है कि एक समय होता है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव जब होता है, हम लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है कि किताबें खोलने के बाद, हाथ में पेन लेने के बाद नींद आने लगती है। और तब माँ पिताजी कहते हैं कि अच्छा नींद आती है ना किताबें लेने पे, फिर तब आप हाथ में किताबें उठाएं, जब आपको सोना है रात के समय में फोन रखिए और किताबें उठाइए ताकि पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाए, है ना। यदि आप में से और भी किसी साथी के साथ ऐसा होता है तो आप लिख सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि ऐसा करने वाले अब ये लिखने वाले साथी और मैं ही हैं, या और भी ऐसे साथी हैं जिन्हें किताबें और लेखनी हाथ में लेने पर नींद आती है। चलिए तब तक सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में दोस्ती फिल्म का ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: जी हाँ, इस गीत में जो शब्द था वो था आवाज, और इससे पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था दिशा। और हाँ बिल्कुल, आप में से कई श्रोताओं ने इसका सही जवाब भी दिया है। एक साथी ने लिखा है, जज की कलम से कोई बरी होता है तो कोई फांसी चढ़ता है, गुरु की कलम से हम साक्षर होते हैं और माता पिता की कलम से ढाढ़स बनता है। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। एक साथी लिखते हैं, कलम रिश्ते को तोड़ देती है और जोड़ भी देती है, कलम से लिखी गई चिट्ठी मन के भाव को बयां करती है, कलम से निकले शब्द ही प्रेम व्यक्त करने का जरिया है। वहीं पे एक साथी लिखते हैं, जो काम धरने प्रदर्शन अनशन और आंदोलन से नहीं होते हैं, वे काम कई बार कलम की ताकत यानी कि लेखन विचारों और कानून से हो जाते हैं। कलम की इस अद्भुत शक्ति से प्रमुख उदाहरण में वैचारिक क्रांति, कानूनी बदलाव और जनमत निर्माण शामिल है।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
0: लीजिए अब आपको सुनवाते हैं जंजीर फिल्म का गीत मन्नाडे की आवाज। गुलशन बावरा का ने इसे लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

टिप्पणियां लिखते रहें, अपने दिल की बात विविध भारती से साझा करते रहें, यानी कि हमसे साझा करते रहें। एक साथी लिखते हैं, लिखने से दिल का आधा बोझ हल्का हो जाता है। जी हां, ये सच में बिल्कुल आपने सही लिखा है। अक्सर कई बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे दिल में होती हैं लेकिन हम बयां नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपनी बात को साझा करें किसी से, मगर विश्वास नहीं होता, या तो फिर हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझेगा नहीं। और कभी कभी यह हमारी गलत फहमी भी होती है, हो सकता है सामने वाला हमें समझ भी ले, तो बयां भी कर सकते हैं। और यदि आप बयां नहीं कर पा रहे हैं तो उसे कहीं उतार लें, कहीं लिख लें, मन पर ना उतारें किसी भी किसी की बात जो आपके दिल को ठेस पहुंचाए। तो ऐसी किसी बात को मन पर लिखने से अच्छा है आप एक बार उसे कागज पर लिख दें और उस कागज को मोड़ माड़ कर फेंक दें, ताकि दोबारा उस बात से आपको ठेस न पहुंचे। एक साथी ने लिखा है, मुझे लिखने के पहले बहुत कुछ सोचता है, यानी शायद ये लिखना चाहते हैं कि बहुत कुछ ध्यान में आता है लिखने से पहले, लेकिन जब लिखने बैठता हूं तब शब्द भूल जाता हूं, इसलिए मुझे लिखना नहीं जमता। एक छोटा सा सुझाव देना चाहती हूं, ऐसा मेरे साथ भी होता है और मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है। जब भी हम कोई विचार अचानक से हमें सूझता है तो मेरी आदत है कि मैं उसे कहीं लिख लेती हूं, या तो नोटपैड में, या फिर अक्सर पहले मैं डायरी अपने साथ रखा करती थी कि जब कुछ अच्छा सा दिख जाए, कहीं सड़क पर, कहीं बाहर गए हैं, कोई अच्छी बात पसंद आए किसी की, तो मैं उसे झट से शॉर्ट में लिख लेती थी, ताकि बाद में उसे विस्तार से उस पर विचार लिखे जा सके। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, डायरी आपके पास ना हो लेकिन फोन पर नोटपैड तो आपके पास होता ही है, तो उसमें कहीं नोट करके लिख लें, ताकि जब आप लिखने बैठें तो उन शब्दों से आपको वो विचार फिर से याद आ जाए और आप उसे अच्छे से लिख सकें। तो अगर ये टिप काम आ जाए तो ट्राई करके देखिएगा। और अब फिलहाल आपको सुनवाते हैं बाबुल फिल्म का गीत, तलत महमूद की आवाज, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद अली का संगीत।

0: रोग लगा दे।
1: जी हाँ, तो शब्द था मिटाना, कई साथियों ने बिल्कुल सही पहचाना। अरे वाह, ये तो तुकबंदी बन गई। चलिए आगे, एक साथी ने लिखा है, पेंसिल की असंख्य गलतियां माफ है, उसे रबर से मिटाया जा सकता है, परंतु कलम पर बोझ बहुत है क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं। उससे जो लिख दिया गया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, अतः कलम का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। किसी ने लिखा है, कई महान क्रांतियों की शुरुआत भड़काऊ नारों से नहीं बल्कि शक्तिशाली लेखों और किताबों से हुई थी। मजबूत लेख और दस्तावेज सरकारों को नीतियां बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कलम विचारों को दूर दूर तक पहुंचाती है जिससे लोगों की सोच बदलती है। जी हाँ, सोच को बदलने के लिए कलम बहुत बड़ा काम करती है। तो आइए इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम पाकीज़ा, लता मंगेशकर की आवाज, कैफ भोपाली ने इसे लिखा है, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

जी हाँ, शब्द था असर, आप लोगों ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है, मैं कक्षा 10वीं में था जब मुझे एक प्रेम पत्र लिखना था। जब मैं कागज कलम उठाई तो दिमाग और दिल इतना धड़क रहा था कि क्या क्या लिखूं, लेकिन एक पीरियड में मैंने अपने दिलों दिमाग की सारी बातें कागज पर उतार दी। मन इतना तरोताजा हो गया कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं रही और फिर मैंने उसे भेज दिया। अब ये तो अधूरी कहानी हुई, आगे तो बताइए क्या हुआ, क्योंकि अभी क्या स्थिति है और आगे क्या हुआ ये भी तो आपको बताना चाहिए, वरना हमारे साथी कैसे समझेंगे इस अधूरी लिखी कहानी से। तो इसे पूरा कीजिए और तब तक सुनिए ये अगला गीत, फिल्म का नाम नया दौर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

जमाना। किसी साथी ने लिखा है, मैडम जी सॉरी टू से जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अब तो पेन कलम का लिखा भी मिटा सकते हैं, वाइटनर है, करेक्शन पेन जो उपलब्ध हैं, तो अभी के लिए वंस अगेन सॉरी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी, करेक्टर जो करेक्शन करने के लिए वाइटनर आता है या फिर जो एडिट किया जा सकता है, उससे आप कहीं कहीं कागज पर या फिर सोशल मीडिया पर लिखा हुआ एडिट या वाइटनर लगाकर उसे मिटा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बात किसी के मन पे लग जाए तब उसे आप कभी नहीं मिटा पाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपनी कलम का इस्तेमाल बहुत ध्यान से सोच समझ कर करिए। इसी के साथ आज की इस सुरीला सफर कार्यक्रम से इजाजत दीजिए नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।

0: मोक्ष। देखिए जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी, कैसे कह सकते इसको नंबर है? हम दोनों को नहीं।
1: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आंखों की आंखों में इशारा हो गया,
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
3: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर, जमुना के तट पर नीरत करत उत हिरत फिरत उत हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग दिग नाथ दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दि

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002466। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो।

0: देश की सुरीली धड़कन, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हाजिर हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में आज मैं पहली बार खतों को लेकर बैठी हूं यहां पर आप लोगों से जुड़ने के लिए, आपके नामों के द्वारा, आपके खतों के द्वारा। तो कार्यक्रम का आगाज करेंगे, पहले सुनिए ये छोटा सा संदेश।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

तो फिर नियम और शर्तें तो आपने सुन ही ली, तो आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। आज आपको मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए पहले देखते हैं किसका खत शामिल किया जा रहा है। ये जो लिखा है खत हमें, ये लिखा है जालंधर पंजाब से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। तो आपको सुनवा रहे हैं इनकी पसंद पर डोली फिल्म का गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। और इसी गीत को ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सुनना चाहा है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया ने। तो आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं रजिंदर कृष्ण का लिखा ये गीत।

ये पहला गीत था आप लोगों की फरमाइश पर। चलिए देखते हैं अगली फरमाइश किस गीत के लिए आई है। इस गीत को जिन्होंने पसंद किया है उनके नाम है शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि पाटिल, सृष्टि पाटिल और समस्त परिवार, शिंदे चौक दक्षिण कस्बा सोलापुर महाराष्ट्र से इन्होंने फरमाइश की है। साथ ही इस गीत को सुनना पसंद किया है गांव कोटड़ा बहादुर से यानी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तूफान दांगी, मिस्टीना दांगी और लक्ष्य बाबू ने। ये गीत है फिल्म यारा दिलदारा से। उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

मन चाहे गीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से और आइए अब आपको सुनवाते हैं दर्द फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की। नक्शलायल पुरी ने इसे लिखा है, खयाम का संगीत। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी और मिसेस कीर्ति सोलंकी ने। इस गीत को सुनना पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

और लीजिए, अब आपको सुनवा देते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आवारा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और शंकर जयकिशन का संगीत है। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है अब्दुल फादर खत्री, शिरीन बानो खत्री, अब्दुल अजीज खत्री और अफीयत खत्री ने। इसी के साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। तो चलिए, इन सभी की फरमाइश पर सुना जाए ये गीत।

0: अपना देश इस फिल्म से गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस गाने की फरमाइश हमें तेलंगाना से भेजी मोहम्मद बुरहानुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला समायरा अजमीन गुड़िया ने, और इस गीत को सुनना पसंद किया जोधपुर से जबर सिंह फूलवाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह फूलवाले ने। और आज का ये जो हमारा सफर था मन चाहे गीत का, ये अब यहीं पर संपन्न होता है। आपके खतों का इंतजार हमें जरूर रहेगा, तो अपने खत भेजते रहिए और हमसे जुड़े रहिए इन खतों के जरिए। और आज ये कार्यक्रम मैंने पहली बार पेश किया है, तो यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। दिल में कोई बात ना रखें, अपनों से हमेशा अपने दिल की बातें साझा करते रहें तो दिल हल्का रहेगा। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने नाटक तोहफा। दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी दिन अंग्रेजी हुकूमत के कैदखाने में बिताए थे। मुगलिया सल्तनत के इस आखिरी चराग को उसके अपने घर की हवाओं ने गुल किया, लेकिन अंग्रेजी कमांडर ने जो तोहफा दिया वो बादशाह तो क्या, पत्थर का कलेजा हिलाने के भी काबिल था। आइए इसी वाकये पर आधारित ये ड्रामा सुनिए, तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर, रूपांतर जोहरा मिर्जा और निर्देशक हैं लोकेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए नाटक तोहफा।

0: करवाई, शालीमार और निषाद बागात लगवाए, मंदिरों के घंटों और मस्जिदों की अजानों को एक जैसा एहतराम करने की कोशिशें की, गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद डाली।
1: और इसी तहजीब और तमद्दुन इत्तहाद को तहस नहस कर देना चाहता है ये फिरंगी, हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना चाहता है ये फिरंगी। लेकिन जब तक एक भी हिंदुस्तानी जिंदा है उसकी तलवार फिरंगी के खिलाफ उठी रहेगी।
0: आलिया, यहां से कूच की तैयारी हो चुकी है, आप मलकाय आलिया को मुत्तिला फरमा दें, मैं पालकी दरवाजे पर लगवा कर अभी हाजिर खिदमत होता हूं।

0: से रात की तारीकी में भाग निकला और अब जंगल बियाबानों में भटकने जा रहा है।
1: ये क्या फरमा रहे हैं मेरे सरकार?
0: हाँ इलाही बख्श, बख्त खान ने सारा बंदोबस्त कर लिया है। हम भेष बदल कर निकल रहे हैं, अब हमारा कयाम यहां मुनासिब नहीं। सुना है लाल किले पर फिरंगी कब्जा कर चुके हैं।
1: बजा फरमाया, मैं आपको तलाश करता हुआ कुछ अर्ज करने हाजिर हुआ हूं। आप हमारे शाह ही नहीं अजीज भी हैं, और ये मेरा फर्ज है कि सही वक्त पर सही सलाह देना।
0: क्या सलाह देना चाहते हैं आप?
1: आप भागने के बजाय गोरों की फतह कबूल फरमा लें।
0: इलाही बख्श, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं?
1: अच्छी तरह से आलीजा, चमकते सूरज को सूरज कहना गुनाह नहीं है। फिरंगी फतह याब हुए हैं और हमारे हिस्से में शिकस्त आई है, हमें कबूल कर लेना चाहिए।
0: आप चाहते हैं हिंदुस्तान के ताज तख्त को फिरंगियों के कदमों के सुपुर्द कर दूं?
1: फिरंगी आपके इंतजार में नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपनी अक्ल और शुजात से हिंदुस्तान का ताज तख्त हासिल कर लिया है। हमारी अक्लमंदी इसी में है कि गोरों की माथहती कबूल कर लें और ठाट से पेंशन लेकर चैन की जिंदगी गुजारें।
0: ऐ पाक परवरदिगार, तमाम आलम में अपना इकबाल बुलंद रखने वाला सल्तनत मुगलिया का शाह जफर फिरंगियों के दिए हुए रद्द मजालिम खैरात पर बाकी की उम्र गुजारेगा।
1: अस्ताखी माफ हो आलीजा, आप भाग कर जाएंगे भी किधर? मुल्क पर गोरों का कब्जा हो चुका है, अपने बेकसूर बच्चों और मलिकाए आलिया के बारे में तो तसव्वुर फरमाएं।
0: क्या फिरंगी हमें इज्जत बख्शेंगे?
2: आलीजा, क्या सुन रहे हैं मेरे कान? तशरीफ ले चले, सवारी तैयार है।
3: बख्त खां, आलीजा ने बियाबानों पहाड़ों में भटकने के बजाय फिरंगी की हुकूमत कबूल फरमाई है। इनकी जानो माल और इज्जत की जिम्मेदारी मैंने ली है।
2: मक्कार गद्दार फरेबी इलाही बख्श, तुम यहां तक गिरोगे मैंने सोचा भी ना था।
3: बख्त खां, जबान को लगाम दो।
2: तलवार म्यान में रहने दो, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वरना इसके पानी से तारुफ करा देता। आलीजा, लम्हा भर भी यहां ठहरना हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
0: बख्त खां, हम बहुत थक गए हैं, टूट चुके हैं, हमारे अज्जा ने फिरंगी का लोहा मान लिया है। एक अकेला बख्त खां और ये जईफ बादशाह जफर।
2: सरकार, देर न फरमाए, तशरीफ ले चले।
3: बख्त खां, बादशाह तन्हा नहीं है, अहलो आयाल के बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है।
2: मेरे सरकार, एक एक लम्हा कीमती है।
0: बख्त खां, हमें मलिकाए आलिया और अपने फर्जंदगान से मशवरा कर लेने दो।
2: सरकार, क्या ये आखिरी फैसला है?
3: बख्त खां, तुम सिर्फ एक सिपहसालार हो, हदें तोड़ने की कोशिश ना करो।
2: आप खामोश हैं आलीजा, इलाही बख्श तुम जीत गए। तारीख का मौर्रिख लिखेगा सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार की हार फरेबी मक्का रिश्तेदार के हाथों हुई है। तो आस्तीन का सांप निकला, इलाही बख्श थूकता हूं तुझ पर। मैं जमुना में नाव पर आलीजा आपकी राह देख रहा हूं।
0: अक्ल काम नहीं कर रही, लगता है रेतीले मैदान में हम खोए जा रहे हैं।
1: नहीं नहीं आलीजा, हम सही रास्ते पर हैं।
0: ये कैसा शोर है? ये कैसा शोर है इलाही बख्श?
3: वो आ गए।
0: तुम हंस रहे हो, कौन आ गए?

0: मैं देखता हूँ। मलिका आलिया,
1: मेरे सरताज,
2: हम आखिरी दांव हार गए। फिरंगी ने हमें घेर लिया है।
1: बख्त खान को बुलवाएं।
3: बख्त कैन, बख्त कैन गुजरा वक्त हो गया, उसी वो अब नहीं आएगा। बादशाह की खिदमत में हटसन आया है।
0: मलिका, आप पर्दे में तशरीफ ले जाए। इलाही बख्श कहाँ है? उसने हमसे कहा था
3: वो हमारा खास आदमी, तुम्हारा एड्रेस पता वही दिया, तुमको भागने से उसी ने रोका।
0: मत कर, इलाही बख्श।
3: चीखने से क्या फायदा, तुम हमारा कैदी, प्रिजनर। इलाही बख्श पाएगा इनाम, और तुमको मिलेगा सजा।
0: किस जुर्म की सजा मिलेगी हमें? इलाही बख्श ने तो कहा था
3: वह देरी से
0: अंग्रेज हमारी इज्जत करेगा।
3: इज्जत, मर्डर का इज्जत, तुमने, तुम्हारा फौज ने अंग्रेजों को मारा है।
0: हमने उन लुटेरों को मारा जो हमारा मुल्क लूटकर हमारी आजादी कुचल देना चाहते थे।
3: बागी का मिजाज अभी तक ठीक नहीं हुआ। डू यू नो बादशाह, तुम जानता है मौत का बदला मौत होता है। अंग्रेज सात समंदर पार करके हिंदुस्तान आया और तुमने उसको मारा। हम भी तुमको तुम्हारी कंट्री से, तुम्हारे वतन से दूर ले जाकर मारेगा।
0: हमें मौत से न डराओ फिरंगी, हम वतन परस्तों के लिए मौत एक महबूब होती है। दुआएं दो गद्दार इलाही बख्श को कि तुम मां बदौलत के रूबरू खड़े हो, वरना फिरंगी ने हमेशा कदमबोसी की है और तोहफों के साथ अर्जदास्त पेश की है।
3: आई नो हम एटिकेट भूला नहीं। बादशाह से कैसे मिला जाता है, हम आज भी गिफ्ट तोहफे के साथ ही आया है। सोल्जर एल्बर्ट, बादशाह की खिदमत में तोहफा गिफ्ट पेश करो। बादशाह हम बाहर जाता है, तुम अपना बेगम के साथ तोहफा कबूल करो।
1: या रब्बुल आलमीन, ये क्या हो रहा है, क्या रख गया है ये फरंगी इस तख्त में?
0: मलिका, यकीनन ये शाह जफर के साथ कुदरत का कोई खौफनाक मजाक है। तख्त से खनपोश तो हटाए। अच्छा हुआ आप बेहोश हो गई। हम अकेले इस गम को सहेंगे। हमारे कलेजे के टुकड़े फर्जंद मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान के सर कलम करके बतौर तोहफा फिरंगियों ने हमें भेजा है। तो जहां के मालिक तू ही फैसला कर, हमारे लख्त जिगरों के सर हैं या हिंदुस्तान की आजादी के कटे हुए गले। मेरे बच्चों, गमों से चूर ज़ईफ बेबस बेकस ये बाप तुम पर फातिहा पढ़ने के बजाय ये ऐलान करता है कि हिंदुस्तान फिरंगी से इस वैश्याना बेरहमी का बदला लेगा। जरूर लेगा, जरूर लेगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं

तोहफा, अभी आपने ये नाटक सुना। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की थी और रूपांतर जोहरा मिर्जा का। नाटक निर्माण में सहायिका थी चित्रलेखा जैन। तकनीकी सहायता विनायक तडवलकर ने प्रदान की। निर्देशक थे लोकेंद्र शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम भूमिकाओं सहित इस प्रकार हैं: बेगम जीनत महल, बिरजिस दोस्त, रुखसाना शहनाज अख्तरी, इलाही बख्श कमल शर्मा, बख्त खां क्यू एन कश्मीरी, हडसन किशोर कपूर और बहादुर शाह जफर विनोद शर्मा। नाटक तोहफा विविध भारती के मुंबई स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया।